मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 जुलाई 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार लिए होंगे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
2: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए

0: पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

ये संसार क्षणभंगुर है, माया है, पूरे संसार को संचालित करने वाला एकमात्र प्रभु ही है। आइए प्रभु के चरणों में शीश नवाएं, उसकी वंदना करें।

चिंता, व्यथा, कष्ट, ये सब मानव मन के साथ जुड़े हैं और ये सब जीवन में आते जाते रहते हैं। स्थाई है तो ईश्वर की सत्ता। ईश्वर की सत्ता स्वीकारें और ईश्वर का सच्चे मन से सुमिरन करें, उसका आराधन करें।

दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। सांसारिक मोह माया में उलझा मानव मन प्रभु को भुला देता है। दुखों के पलों में ही हम ईश्वर का सुमिरन करते हैं। एकमात्र ईश्वर ही सत्य है और बाकी सारा संसार मिथ्या है। ईश्वर का सुमिरन करते रहिए।

स्वामी विवेकानंद ने कहा, जीवन तो जन्म के साथ ही प्रकाश युक्त रहता है, किंतु मनुष्य अपनी नासमझी से उसे कई बार अंधकार युक्त बना देता है। अपने विवेक को जागृत बनाए रखिए तो जीवन सदा ही प्रकाशमान।

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आज आपने समूह स्वर में देशभक्तिपूर्ण रचना के पश्चात चंदन दास, चित्रा सिंह, नीना राजेंद्र मेहता और हरिओम शरण नंदिनी शरण के गाए भजन सुने। अब आज की वंदना संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

भगवान शंकर के श्रीमुख से श्री रामचंद्र के ब्रह्म, चिन्मय तथा अविनाशी होने का ज्ञान पाकर पार्वती का संशय मिट गया था। फिर भी उन्होंने ये जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी कि प्रभु ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। भगवान शिव ने तब उन्हें वो सभी तथ्य बताए जो अवतार के हेतु कहे जा सकते हैं। इनमें से एक प्रभु द्वारा नारद मुनि के मोहभंग की कथा है। दूसरी कथा है आदि पुरुष मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को मिले वरदान की। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में मिलती है। देवहूति मनु की कन्या थी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ तथा कृपालु आदिदेव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। स्वर था मालिनी नाम्बियार का और संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन, विषय है ब्रह्मांड, आलेख महेंद्र कुमार माथुर का है।
1: सन 1952-54 के शिक्षा सत्रों में विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले सामान्य ज्ञान के पाठों में प्रमुख पाठ होते थे हमारी दक्षिण ध्रुव यात्रा और विजय, एडमंड हिलेरी द्वारा एवरेस्ट विजय आदि आदि। अर्थात हमारे ज्ञान की सीमा पृथ्वी की धरातल थी। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में विश्व का प्रथम मानव निर्मित उपग्रह छोड़ा गया था। ये दिन हमारे सौर मंडल की खोज का प्रारंभ था। वेद के अध्ययन के विषयों में शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष आते हैं, जिसमें ज्योतिष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय ज्योतिषियों ने हमारी पृथ्वी के परिक्रमा पथ को 12 भागों में विभक्त किया है। इन्हें राशियां कहते हैं। ये आकाश में स्थित तारापुंजों का समूह हैं। इनके साथ ही 27 नक्षत्रों का भी भारतीय अध्ययन करते रहे हैं। हमारे महीनों के नाम जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि भी नक्षत्रों के नाम पर हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की गणना भी भारतीय ज्योतिषी सटीक करते रहे हैं। ये सभी उल्लेख हमारी ब्रह्मांड को जानने की जिज्ञासा का प्रमाण हैं। वस्तुतः ब्रह्मांड है क्या? ये प्रश्न आज के अंतरिक्ष युग में भी पहाड़ के समान हमारे सामने खड़ा है। पश्चिम के वैज्ञानिक चिंतन जगत में हम एरिस्टॉटल से लेकर न्यूटन, हॉकिंग, आइंस्टीन और वर्तमान में स्टीफन हॉकिंग के विचारों से अवगत हैं। एक सिद्धांत बिग बैंग नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार एक महाविस्फोट हुआ था और तभी से उस पदार्थ में से हमारी निहारिका, सौर मंडल आदि बने और निरंतर बन रहे हैं। वैदिक सिद्धांत के अनुसार आदिकाल से ही तीन पदार्थ अस्तित्व में चले आ रहे हैं। ये पदार्थ हैं ब्रह्म, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति एक द्रव्य थी, वो अप्रकट थी, महान ऊर्जा से भरी पड़ी थी और इसी द्रव्य में महाचेतन ब्रह्म की प्रेरणा से एक महाविस्फोट हुआ था। इस विस्फोट के बाद इस अव्यक्त द्रव्य ने आकाशीय पिंडों के समान व्यक्त पिंडों का रूप ग्रहण किया, जो आज हमें दिखाई दे रहा है। तब से ही जगत अस्तित्व में आया। ये अस्तित्व मानपिंड समूह आकृति में अंडे के समान है और अति विशाल होने के कारण ब्रह्म अर्थात बड़े से बड़ा ब्रह्मांड नाम से संज्ञित है। आज हम हमारे सौर मंडल को भली भांति समझते हैं। ये सौर मंडल इस ब्रह्मांड की इकाई, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, का एक भाग है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त को नासदीय सूक्त के नाम से जाना जाता है। इस सूक्त में जो वर्णन है वो अति वैज्ञानिक है। सूक्त के मंत्रों में इन वैज्ञानिक तथ्यों का उल्लेख है, जैसे दृश्यमान जगत के पूर्व कुछ अवश्य था, उस समय आकाश भी नहीं था, उस समय सत अर्थात प्रकृति भी नहीं थी, क्योंकि जो ये व्यवहार जगत सत है वो कारण में लीन था, उस समय परमाणु नहीं थे, उस समय व्योम अर्थात आकाशीय पिंडों के बीच का खाली स्थान, जिसे आज की भाषा में स्पेस कहते हैं, वह भी नहीं था। सृष्टि रचना में ईश्वर का संकल्प महत्वपूर्ण है। उसी के संकल्प से ये सृष्टि रचना और उसका क्रम चल रहा है। श्याम बेनेगल ने भारत एक खोज सीरीज के प्रारंभ में इस सूक्त को गद्य काव्य में इस प्रकार गाया है। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या कहां, किसने देखा था उसे, वो पल तो अगम अटल था।
0: अभी आप

0: सुन रहे थे चिंतन, विषय था ब्रह्मांड, आलेख महेंद्र कुमार माथुर का था। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है कृषि चर्चा। इस कार्यक्रम में विषय है खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी।
1: किसान भाइयों, इस खरीफ मौसम में हम देखते हैं कि हमारी फसलें लगी हुई हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के रोग आना प्रारंभ हो चुके हैं। तो किसान भाइयों से हम ये अनुरोध करेंगे कि ये इसमें खरीफ के मौसम में जो भी हमारे द्वारा फसलें लगाई गई हैं किसान भाइयों द्वारा, उसको हम किस प्रकार से उसमें रोगों को पहचान सकते हैं और उसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश की हमारी सोयाबीन प्रमुख फसल है, उसके साथ ही साथ उड़द मूंग का भी क्षेत्रफल है, उसके साथ साथ हम दलहनी फसल में जो हमारी खरीफ मौसम की एक फसल है उसमें अरहर नाम की एक फसल है जिसको हम उगाते हैं, और साथ ही साथ हमारी एक धान एक प्रमुख फसल होती चली जा रही है, और उसके साथ साथ विकल्प के रूप में एक मक्का फसल का भी क्षेत्रफल काफ़ी विस्तार रूप से चल रहा है। तो सर्वप्रथम हम किसान भाई चर्चा करेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश की जो सोयाबीन फसल रहती है उसमें पीला मोज़ेक रोग फैलने से काफ़ी फसल हमारी प्रभावित होती है, उसके साथ साथ चारकोल रॉट नाम की एक बीमारी, दूसरी एक कॉलर रॉट नाम की बीमारी या पॉड ब्लाइट नाम की बीमारी या एंथ्रेक्नोज नाम की बीमारियां इस तरीके से हमारी सोयाबीन की फसल को प्रभावित करते हैं। तो किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि जैसे पीला मोज़ेक रोग को नियंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम कीटनाशक से अगर बीज उपचार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी फसल 25 से 30 दिन तक उस रोग को नहीं फैलने देती है। और उसके साथ साथ में उपचार कैसे करना है, सर्वप्रथम हमें पीला मोज़ेक रोग के नियंत्रण के लिए जैसे थायमेथगजाम 30 FS 10 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करना है, उसके साथ साथ हमें इमिडाक्लोपिड 48 FS हमारे विकल्प के रूप में दूसरी दवा है, अगर हम उस दवा थायमेथगजाम से नहीं कर पाते हैं तो इमिडाक्लोपिड 48 FS नाम की एक दवा आती है जिससे हम बीज उपचारित करके हम 1.25 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचारित करेंगे तो निश्चित रूप से पीला मोज़ेक रोग नहीं फैलेगा। इसके साथ जब हमारी 30 से 40 दिन की फसल होती है तो थायमेथगजाम 25 WG नाम की एक दवा आती है जिसको हम छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से हम पीला मोज़ेक रोग को बचा सकते हैं। साथ ही साथ इमिडाक्लोपिड 17.8 SL की जो दवा आती है उसको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से हम सोयाबीन में पीला मोज़ेक रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ साथ इन्हीं जो दवाओं का मैंने सोयाबीन के लिए प्रयोग कर सकते हैं उनको हम उड़द और मूंग का जो पीला मोज़ेक रोग आता है उसको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी दूसरी फसल जैसे धान हमारी एक प्रमुख फसल होती चली जा रही है और उसका काफ़ी क्षेत्रफल सुगंधित धानों का बढ़ता चला जा रहा है, उसमें जैसे वर्तमान में सीथ ब्लाइट रोग नाम एक आता है जिसको हम नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। जब खेतों में बहुत दिनों तक पानी भरा रहता है और साथ ही साथ देखते हैं कि धूप पड़ती है, पानी गर्म हो जाता है, उस कारण से तने के पास जो सीथ होती है वहाँ पे पत्तियाँ जुड़ी रहती हैं, वहाँ पे अनियमित आकार के काले काले धब्बे दिखने लगते हैं जिसे हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। सीथ ब्लाइट रोग के नियंत्रण के लिए हमें सर्वप्रथम खेत से पानी को निकालने की ज़रूरत रहती है, साथ ही साथ जब हमारे खेत में करीब 1 inch तक हमारा पानी रहता है उस समय हमें दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और उस समय नत्रजन खाद का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। तो हमें जैसे हेक्साकोनाजोल 5% EC की दवा आती है उसे 400 ml प्रति एकड़ या फिर प्रोपिकोनाजोल 25 EC उसे 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से किसान भाई हमारे धान में सीथ ब्लाइट रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी हमारी कुछ ही दिनों में जब हमारी करीब 50 से 60 दिन की फसल होती है, बालियां निकलना प्रारंभ होती हैं, तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नाम की एक जीवाणु पत्ती झुलसा जिसे हम कहते हैं, इस बीमारी के फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हमें ये चूँकि जीवाणु द्वारा फैलती है और इसको हम पहचानने का कि जब हमारी पत्तियाँ ऊपर की तरफ से दोनों सिराएँ सूखते हुए नीचे की तरफ स्तंभ की तरफ तने की तरफ अगर दिखाई दें, उस पत्ती को अगर हम दबाते हैं तो जीवाणु के झाग जैसा निकलता है तो हम पहचान सकते हैं कि ये हमारी जीवाणु पत्ती झुलसा रोग का प्रकोप हमारी फसल में हो चुका है। उस समय नत्रजन खाद का इस्तेमाल बिल्कुल किसान भाई नहीं करेंगे और साथ ही साथ हमको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़, उसके साथ साथ हमको 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रति एकड़ के हिसाब से हमको 200 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे

0: तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाई बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या जीवाणु पत्ती झुलसा रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, विषय था खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन। वार्ताकार थे डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: श्रवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणां कृतवान्। अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षतां विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नन्दन नीलेकणी करिष्यति। अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्व निदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्व निदेशकः वी कामकोटिः, पूर्व शिक्षा सचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञः अमितलाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्य श्रव्य संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति। तस्य अनुशंसानाम् आधारेण भावि परीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षा सम्बद्धानाम् अनियमिततानां निवारणाय कठोर प्रावधानयुक्तं नूतन विधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गतशुक्रवासरे केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतर दंड विधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी शिक्षा मंत्रिणः कार्यभारं अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गतशनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्रीजोशी स्ववर्तमान मंत्रालयैः सह शिक्षा मंत्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तान देशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य सम्पूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
3: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
1: रक्षा मंत्री ह्यः लद्दाखस्य द्रास नगरे 27वें कारगिल विजय दिवस समारोहं संबोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणु बल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरं अन्तरिम युद्धविराम विषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अमेरिका देशस्य राजदूतः माइक वॉल्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपतिः ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु महिलानां 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू इत्येषा स्वर्णपदकं विजितवती। इति

0: Vartaa.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। श्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
2: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: कार्यबल में आसूचना ब्यूरो आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्याम बाला मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संडिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये पहल की गई है। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के राजदूत माइक वॉल्ट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 लोग घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लॉट के तौर पर हुई है। लगभग 24 घंटे की खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई ने असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतना उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4th राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। श्री शाह ने कहा कि शानदार उपलब्धि ने चानू का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। वो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। इसके साथ

0: थी, ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम आज सुबह 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भोपाल में देश के पहले संस्कृत रंगमंडल की शुरुआत पर समन्वयक एवं नाट्यशास्त्र विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता गुंतीचा से बातचीत, शक्ति सदन की महिलाओं के जरी जरदोजी के हुनर से स्वावलंबन पर जिला हथकरघा कार्यालय भोपाल की उपायुक्त रूपाली सक्सेना से संवाद और टाइगर पेरेंटिंग और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर पेरेंटिंग कोच डॉक्टर जैनब माटे के से बातचीत।

8:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर लोक संगीत कार्यक्रम सुना जा सकता है। इसमें आज आप सुनेंगे मोनिका शुक्ला के निमाणी गीत। उर्दू कार्यक्रम आईना हम आपको सुनवाएंगे 9:30 पर। ज़िले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं सुबह 10 बजे और गीत सागर कार्यक्रम होगा 10:05 पर। 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इसमें आज आप सुनेंगे माधव गुड़ी का गायन, राग होगा तोड़ी। शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम सुना जा सकता है। आइए अब जानते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों में आज सुबह 11 बजे आप सुन सकते हैं फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने, आपकी फरमाइश कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 12 बजे। 12:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत धारावाहिक कामिनी का एकांतारे का 12वां भाग सुना जा सकता है। स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम होगा दोपहर 1 बजे। 1:30 पर आप सुन सकते हैं लोक संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे ठवाराम मरकाम और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी लोकगीत। 1:45 पर सुगम संगीत का आनंद लिया जा सकता है। इसमें आज आप सुनेंगे चंद्रशेखर चक्रवर्ती के गाए भजन। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दोपहर 2 बजे। 2:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। आइए अब जानते हैं सांध्यकालीन सभा के आकर्षण। शाम 5:02 पर युवा साथी सुन सकते हैं युववाणी कार्यक्रम। 5:33 पर फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। 6:30 पर फिल्म संगीत सुना जा सकता है। आजकल आप सुन सकते हैं शाम 6:40 पर। 6:45 पर समाचार प्रादेशिक समाचार दर्शन सुने जा सकते हैं। रात 8 बजे संसद समीक्षा हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुर्खियों में सुना जा सकता है 8:15 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 8:30 पर। 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे पब्लिक स्पीक। दिल्ली केंद्र से ही हम रात 10 बजे रिले करेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग। तो ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। परीक्षा सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया उच्च स्तरीय कार्यबल, नंदन नीलकेणी करेंगे नेतृत्व। लोकसभा में आज पेश होगा पेपर लीक रोकने वाला संशोधन विधेयक, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे प्रस्तुत। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवाड़ी को दी 109 करोड़ रुपए की विकास सौगात, खुलेंगे नए महाविद्यालय। और प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय, 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इस कार्यबल का नेतृत्व प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर काम करेगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय और पारदर्शी होनी चाहिए। कार्यबल में पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ और आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी सहित कई विशेषज्ञ शामिल होंगे। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। इसे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्वरित न्यायालयों की स्थापना और पेपर लीक के मामलों में कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के सीधी और नरसिंहपुर जिले में जल संरक्षण के कामों की सराहना की। उन्होंने बताया कि सीधी में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं, जबकि नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को नया रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 4 जुलाई से देश भर में कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास के तालाब, कुएं और बावड़ियों की जिम्मेदारी लेने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों का भ्रमण कर लौटे युवाओं से संवाद किया। ग्वालियर जिले में युवा विक्रम सिंह बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल युवाओं में से एक हैं। ये कार्यक्रम 4 जून से 30 जून तक आयोजित किया गया था, जिसमें युवाओं को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 सीमावर्ती गांवों का भ्रमण कराया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि माय भारत मंच से अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल निवाड़ी में 109 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 44 कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने 54 करोड़ रुपए के 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब, युवा, नारी और किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है।
2: अभी दूध का उत्पादन 12% है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। जो मछली पालन करते वो मछली पालन के लिए, जो सिंगाड़े की खेती करते सिंगाड़े के लिए, जो कमलगट्टे का काम करते वो कमलगट्टे के लिए, और तो और राज्य ने युवाओं के काम के लिए पृथ्वीपुर में कारखाना चालू हो गया। जोरदार ताली बजाए अपने लिए।
0: उन्होंने बताया कि इस साल 14 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा गया। मुख्यमंत्री ने निवाड़ी में विधि महाविद्यालय और

0: बीए महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को ज्ञान, संस्कार और प्रेरणा का सतत प्रवाह बताया है। भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय में छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कार्यक्रम से पहले छात्राओं के साथ मन की बात का सामूहिक श्रवण भी किया। राज्यपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम देश के हर क्षेत्र से प्रेरक प्रसंग सामने लाता है। उन्होंने छात्राओं से इस कार्यक्रम को नियमित सुनने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े हितग्राहियों के लिए आर्थिक संबल साबित हो रही है। झाबुआ जिले के मेघनगर में इस योजना का लाभ लेकर एक महिला ने अपने छोटे व्यवसाय को सफल उद्यम में बदल दिया है। अधिक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता हरीश यादव।
2: कविता राठौर ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। योजना के तहत उन्होंने बैंक से पहले चरण में 10,000 रूपए का ऋण मिला, जिसे उन्होंने एक सिलाई सेंटर के साथ रेडीमेड कपड़ों की दुकान शुरू की। समय पर ऋण चुकाने के बाद उन्होंने दूसरे चरण में 25,000 और तीसरे चरण में 50,000 रूपए का ऋण प्राप्त हुआ। कविता राठौर ने आकाशवाणी को बताया
3: कि जो सहायता हमको मिली है वो सही समय में मिलने से हमारा परिवार का भरण पोषण में कर पा रही और आत्मनिर्भर बनी हूँ। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ।
2: अधिकारियों का कहना है कि यह योजना छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेघनगर CMO LS राठौर ने आकाशवाणी को बताया कि
4: नगर पंचायत द्वारा पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने और उन्हें सभी चरणों का लाभ दिलाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।
2: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका की दिशा में एक सशक्त कदम बनकर उभर रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए झाबुआ से हरीश यादव।
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। पुलिस मुख्यालय ने चंबल ग्वालियर अंचल में तैनात 14 निरीक्षक और उप निरीक्षकों को हटाकर नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। ये कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दतिया उपचुनाव के तहत बसई में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले ग्वालियर चंबल में डकैतों और अपहरण का आतंक था, जिसे उनकी सरकार ने खत्म किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कल बाघ सप्ताह के तहत रन फॉर टाइगर का आयोजन किया गया। इसमें करीब 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून का मजबूत सिस्टम फिर सक्रिय हो गया है। कल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में तेज बारिश हुई, जबकि आज 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी रहेगी। भारत ने कल हरारे में तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 35 रनों से हराकर श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। जिम्बाब्वे की टीम 193 रनों के लक्ष्य के जवाब में 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। भारत की ओर से मयंक यादव ने 3 विकेट और यश ठाकुर ने 2 विकेट लिए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे ग्लासगो में भारत के कुल पदकों की संख्या 4 हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। करगिल विजय दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित त्रिदिवसीय फोटो प्रदर्शनी के दूसरे दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक लाइव प्रसारण किया गया। रायसेन में करगिल विजय दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा देश के अमर शहीदों की स्मृति में मशाल यात्रा निकाली गई। खंडवा में नशा मुक्त फॉर विकसित भारत कार्यक्रम आज स्थानीय किशोर कुमार सभागृह में आयोजित किया जाएगा। झाबुआ में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत पुलिस द्वारा व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं धार में कल नशा मुक्ति जन जागरूकता मैराथन का आयोजन किया

किया गया। उधर कटनी में संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत चौकी क्षेत्रों में हाट बाजार बस स्टैंड बाजारों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

नमस्कार श्रोताओं, खिड़की पर जमी बारिश की बूंदें, पत्तों को सहलाती ठंडी हवा, चाय की प्याली से उठती भाप और हर धड़कन में एक नई उम्मीद का एहसास। इन्हीं खूबसूरत लम्हों के साथ मैं आपकी रेडियो साथी शीतल अटकड़े आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में। दोस्तों, आज सुबह अखबार के पन्ने पलटते हुए एक विचार पर नजर ठहर गई। लिखा था, हर इंसान की प्रतिभा अलग हो सकती है, लेकिन उसे निखारने का अवसर सबके पास होता है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को पहले मुश्किल समझा हो, लेकिन एक छोटी सी कोशिश ने आपको अपनी ही नई क्षमता से परिचित करा दिया हो? या क्या कभी आपने खुद से पूछा है, अगर मौका मिले तो आप अपनी किस प्रतिभा को सबसे पहले निखारना चाहेंगे? ये प्रेरणादायी विचार भारत के मिसाइल मैन, महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर EPJ अब्दुल कलाम का है। आज उनकी पुण्यतिथि पर आकाशवाणी भोपाल की ओर से उन्हें शत शत नमन। रामेश्वर की साधारण गलियों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक उनका सफर हमें यही सिखाता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए परिस्थितियां नहीं, बल्कि मेहनत, लगन और सीखते रहने का जज्बा मायने रखता है। शायद यही वजह थी कि डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व के कई प्रेरक रूपों में उन्हें सबसे प्रिय एक शिक्षक की भूमिका थी। उन्हें विश्वास था कि हर बच्चे और युवा के भीतर एक प्रतिभा होती है, जिसे सही अवसर और मार्गदर्शन मिल जाए तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन। तो आइए आज अपने भीतर छिपी उस प्रतिभा पर भरोसा करें जो शायद अभी भी एक अवसर का इंतजार कर रही है, क्योंकि हर नई सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है, कुछ सीखने का, कुछ नया करने का और अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाने का, और शायद ठहर कर ये सुनने का भी कि आखिर जिंदगी हमसे क्या कह रही है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, आपकी रेडियो साथी शीतल अटकड़े के साथ। तो चलिए अब रुक करते हैं आज के समाचार पत्रों की ओर और जानते हैं देश दुनिया, प्रदेश और भोपाल से जुड़ी कुछ खास खबरें। नीट पेपर पर हुए बवाल और युवाओं में आक्रोश के बाद अब देश के परीक्षा ढांचे को फुल प्रूफ बनाने की आस बंधी है। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और इंफोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज मध्य प्रदेश के 55 जिलों में किए स्थापित। मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। प्रदेश के सभी 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज स्थापित करने की पहल को गति देते हुए विद्यार्थियों को आधुनिक गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।

अब खबर खेल जगत से। टीम इंडिया ने किया जिम्बाब्वे का 3-0 से क्लीन स्वीप, T20 रैंकिंग में फिर शीर्ष पर। भारत ने लगातार 7 T20 मैचों में जीत से वंचित रहने के बाद अब इस प्रारूप में जीत की हैट्रिक लगा दी है। हरारे में रविवार को खेले गए तीसरे और अंतिम मुकाबले में जिम्बाब्वे को 35 रनों से हराते हुए टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप पूरा किया है। इंग्लैंड से 0-4 से और आयरलैंड से 0-2 से सीरीज गंवाने के बाद ये भारत की शानदार वापसी रही। और आखिर में मौसम की खबर। भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में 4 दिन अच्छी बारिश की संभावना। भोपाल में जुलाई के आखिरी 4 दिन अच्छी बारिश होने हो सकती है। रविवार को भी दिनभर बादल छाए रहे और रुक रुक कर बौछारें पड़ती रही। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना मानसूनी सिस्टम कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। ये सिस्टम सोमवार को ओडिशा बंगाल तट पार करेगा। इसके बाद

35 रनों से हराते हुए टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप पूरा किया है। इंग्लैंड से 0-4 से और आयरलैंड से 0-2 से सीरीज गंवाने के बाद ये भारत की शानदार वापसी रही। और आखिर में मौसम की खबर। भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में 4 दिन अच्छी बारिश की संभावना। भोपाल में जुलाई के आखिरी 4 दिन अच्छी बारिश होने हो सकती है। रविवार को भी दिनभर बादल छाए रहे और रुक रुक कर बौछारें पड़ती रही। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना मानसूनी सिस्टम कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। ये सिस्टम सोमवार को ओडिशा बंगाल तट पार करेगा, इसके बाद पूर्वी मध्य प्रदेश तक पहुंच सकता है। इसके असर से 28 से 31 जुलाई के बीच पूरे प्रदेश में बारिश का नया दौर शुरू होने के संकेत हैं। ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। अब खबरों को थोड़ा विराम लेते हैं और सुबह के इस खुशनुमा माहौल को सुरों से और भी खूबसूरत बनाते हैं। सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी भोपाल से हर शाम रोजाना 5:02 पर सुनिए युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान

0: EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, आपके रेडियो साथी शीतल अटकड़े के साथ। श्रोताओं, भोपाल हमेशा से ही रंगकर्म और कला की ऐतिहासिक धरती रहा है और अब भोपाल के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा भोपाल में देश का पहला संस्कृत रंगमंडल गठित किया गया है, जहाँ देश भर से चुने गए 14 बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट संस्कृत के प्राचीन नाटकों को नए अंदाज में मंच पर उतार रहे हैं। आज यानी 27 जुलाई को पहला नाटक नागानंद भी मंचित होने जा रहा है। संस्कृत नाटकों का ये संसार कितना समृद्ध है और कैसे आम दर्शकों तक इसे पहुंचाया जाएगा, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इस संस्कृत रंगमंडल की समन्वयक और नाट्य शास्त्र विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता गुंदेचा।
3: आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार भोपाल के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: भोपाल में देश का पहला संस्कृत रंगमंडल शुरू होना शहर के लिए बड़े गर्व की बात है। इस रंगमंडल को शुरू करने के पीछे क्या सोच और क्या उद्देश्य रहा?
4: देखिए, भोपाल आरंभ से ही एक सांस्कृतिक नगरी रही है। अब जो हमारे वर्तमान कुलपति हैं प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी, जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में उनका हमारा परिसर है, मुख्य परिसर है, तो हमारे भारत में पूरे 13 परिसर हैं अनेक स्थानों पर। तो वरखेड़ी जी ने जो संस्कृत नाटक है वो फिर से पुनरुज्जीवित हो और एक तरह से संस्कृत नाटकों के द्वारा संस्कृत भाषा का प्रचार किया जाए, क्योंकि नाटक एक बहुत ही रंजक विधा मानी जाती है ना। तो ये हो कि भाई संस्कृत सरल तरीके से, सुंदर तरीके से अभिनय करके और अच्छी वेशभूषा के माध्यम से, यानी एक सुंदर नाटक बनाकर अगर संस्कृत का उसमें उपयोग किया जाए तो लोग एक रंजक तरीके से संस्कृत को सीखने में उनको मदद मिलेगी।
3: और जैसे कि हम जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में भी भाषाओं के समन्वय पर काफी जोर दिया गया है, तो ये संस्कृत मंडल इस नीति के अनुरूप अन्य स्थानीय भाषाओं को एक साथ कैसे जोड़ रहा है?
4: जो हमारी नई पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये कहा गया है कि जो है विभिन्न भाषाओं के साथ समन्वय हो, ऐसी शिक्षा नीति हो। तो हम संस्कृत जो नाटक करेंगे रंगमंडल के माध्यम से, वो केवल संस्कृत में नहीं होगा, भारतीय भाषाओं का भी उसमें प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी होगी, बुंदेली हो सकती है, मालवी हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, मलयालम हो सकती है, क्योंकि हमारे रंगमंडल में पूरे देश से लोग शामिल हुए हैं। इसमें 14 कलाकार हैं, एक हमको तकनीकी सहयोगी मिले हैं, तो पूरे देश से कलाकार होने के कारण हमारे पास सांस्कृतिक विविधता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए और रंगमंडल के जो लोग हैं उनकी एक तरह से जो उनका कौशल है, वो जिस भाषा संस्कृति को लेकर आए हैं उसको भी शामिल करते हुए हम भविष्य में नाटक करने का प्रयास करेंगे।
3: जी, और जैसे कि आज देश के पहले संस्कृत रंगमंडल का पहला नाटक नागानंद मंचित होने जा रहा है, तो जिन दर्शकों को संस्कृत पूरी तरह नहीं आती वे इस नाटक का आनंद कैसे ले पाएंगे?
4: संस्कृत के साथ हिंदी भी रखी गई है, यानी जहाँ जहाँ सूचनाएं हैं या कथा के बारे में एक तरह का नरेशन है वहाँ पर हिंदी रखी गई है, ताकि जो दर्शक लोग, जो मान लीजिए जिनको संस्कृत पूरी तरह से नहीं आती या संस्कृत नहीं आती, तो वो नरेशन के माध्यम से, वो जो बीच बीच में हिंदी है उसके माध्यम से पूरा उनको कथा को समझने में सहयोग मिल जाएगा। और साथ ही जो संस्कृत भाषा के उच्चारण की जो खूबसूरती है, उसमें जो उदात्त अनुदात स्वरित है, उसका जो आनंद है, यानी चिक जो अभिनय है उसका भी बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। तो चारों जो अभिनय है, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार, इन सबको मिलाकर एक नाट्यशास्त्रीय एक तरह से अवयवों को रखते हुए और साथ में वह प्रस्तुति रंजक हो। आप देखेंगे कि हमारी कार्यशाला में वस्त्र विन्यास के लिए श्री संजीव राज सिंह परमार आए हुए हैं, जिन्होंने पहली फिल्म और पृथ्वीराज चौहान फिल्म का वस्त्र विन्यास किया है। नाट्य पाठ जो है वो रामकुमार शर्मा जी के सानिध्य में मैंने और हमारे यहाँ ज्ञान सिंधु जी हैं, विनोद शर्मा, हम लोगों ने तैयार किया है। लगभग 15 प्रदेशों से आए हुए कलाकारों और संस्कृत रंगमंडल, जो अभी अभी हमारे कुलपति जी ने संस्कृत का प्रचार प्रसार करने के लिए यह जो रंगमंडल बनाया है, तो ये संस्कृत रंगमंडल और सारे जो प्रतिभागी हैं ये मिल के नागानंदम नाटक की प्रस्तुति देंगे।
3: और चलते चलते हमारे श्रोताओं और युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगी जो इस ऐतिहासिक

0: ऐतिहासिक नाट्य प्रस्तुति के साक्षी बनना चाहते हैं।
1: सुनने वाले अभी जो हमारे श्रोता हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि वे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बाग सेवनिया भोपाल में आज 4 बजे पधारें और नाटक का आनंद लें।
0: संस्कृत रंगमंच के इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को आकाशवाणी परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, अगर आप भी आज इस ऐतिहासिक नाटक के साक्षी बनना चाहते हैं तो जरूर पहुंचें। और अब इसी भारतीय सांस्कृतिक सौंदर्य को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं फिल्म कलंक का शास्त्रीय रंगों से सजा ये मनमोहक गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, जिंदगी जब कठिन इम्तिहान लेती है तो अक्सर उम्मीदें डगमगाने लगती हैं, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारते वो मुश्किलों के अंधेरे से निकलकर अपने हुनर का नया सवेरा रचते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उम्मीद और स्वाभिमान की एक ऐसी मिसाल की जो हमारे शहर की बहनों की जिंदगी बदल रही है। निर्भया फाउंडेशन और मध्य प्रदेश हथकरघा निगम की पहल पर शक्ति सदन में जरी जरदोजी के ताने बाने से दर्द को सृजन में बदला जा रहा है। इसी खूबसूरत बदलाव और स्वावलंबन के सफर पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं जिला हथकरघा कार्यालय भोपाल की उपायुक्त रूपाली सक्सेना।
3: आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सबसे पहले तो इस बेहद खास और संवेदनशील पहल के बारे में बताइए, इसकी शुरुआत कैसे हुई?
4: इसकी शुरुआत हथकरघा हस्तशिल्प संचालनालय और निर्भया फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से हुई है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो निर्भया फाउंडेशन का शक्ति सदन है, वहाँ पर जितनी

0: भी डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित महिलाएं हैं उनको हम जड़ी जरदोजी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि उनको आगे चलकर एक आत्मनिर्भर व्यक्तित्व हम बना सकें। तो इसी देश से इसी पहल की गई है और हमारा विश्वास है कि जब हम किसी व्यक्ति को उसके हुनर के माध्यम से आजीविका दिलाते हैं तो उसके जीवन में एक आत्मविश्वास और नई उम्मीद जागती है।
1: घरेलू हिंसा या किसी भी मानसिक सदमे से गुजर चुकी महिलाओं के लिए कला और क्राफ्ट से जुड़ना कितना मददगार साबित हो रहा है?
0: देखिए, कला जो है वो केवल रोजगार का माध्यम नहीं है बल्कि यह एक भावनात्मक उपचार भी है। जब महिलाएं अपने हाथों से सुंदर उत्पाद तैयार करती हैं तो उनमें एक आत्मविश्वास आता है, तनाव भी कम होता है और साथ में वह अपने आप को समाज का एक सम्मानित हिस्सा महसूस करती हैं। तो इसीलिए जो ये घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं जब ये कला का कुछ सृजन करती हैं तो उनके अंदर एक अलग आत्मनिर्भरता की एक भावना आती है। तो यही इसका एक मैं मानती हूँ कि इसीलिए हमने इस प्रशिक्षण को वहाँ पर शुरू किया है।
1: अब ये बताइए कि ट्रेनिंग के दौरान क्या कोई ऐसा पल या कहानी है जिसने आपको गहराई से छुआ हो कि जब किसी महिला का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटा हो?
0: सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही कि शुरुआत में ये महिलाएं काफी संकोच कर रही थीं और उनमें आत्मविश्वास की भी कमी दिखती थी हमको, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उन्होंने अपने हाथों से सुंदर जरी जरदोजी के उत्पाद तैयार किए और उनकी सराहना हुई तो उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास और मुस्कान दिखाई दिया वही इस पहल की सबसे बड़ी सफलता मैं मानती हूँ।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि ये महिलाएं भोपाली बटुए, साड़ियां और सजावटी सामान बना रही हैं, तो इन्हें कहाँ से खरीद सकते हैं और इनके लिए बाजार की क्या व्यवस्था है?
0: ये जितने भी उत्पाद हैं, जैसे ये जरी जरदोजी के उत्पाद इन्होंने बनाए हैं, ये एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो परियोजना है उसके अंतर्गत आते हैं। तो हम इनको मृगनैनी एम्पोरियम और जितने भी हस्तशिल्प मेले, प्रदर्शनियां और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 7 अगस्त को हैंडलूम दिवस पर ODOP मार्ट वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं तो उसमें भी हम इनके उत्पादों को डिस्प्ले करेंगे और वहां से भी उनकी बिक्री हो सकती है। तो इस तरह से हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये उत्पाद बनाएं और इनकी हम अलग अलग स्थानों पर मार्केटिंग करें।
1: और अब आखिर में ये बताइए कि जो महिलाएं या संस्थाएं इस पहल से जुड़ना चाहती हैं वे आप तक कैसे पहुंच सकती हैं और हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
0: बिल्कुल, जो भी इच्छुक महिलाएं हैं या संस्थाएं हैं तो वो हथकरघा हस्तशिल्प संचालनालय, माध्यमिक शिक्षा मंडल, वहाँ पे हमारा ऑफिस है, वहाँ पर वो संपर्क कर सकती हैं। और इसके अलावा मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप स्थानीय हस्तशिल्प अपनाइए, स्थानीय कारीगरों का समर्थन कीजिए, क्योंकि जब हम ऐसे उत्पाद खरीदते हैं तो हम केवल एक वस्तु नहीं खरीदते बल्कि किसी महिला के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और एक नए जीवन की शुरुआत में अपना योगदान देते हैं। तो हर महिला में एक असीम क्षमता है, यदि उसे अवसर, प्रशिक्षण और विश्वास मिले तो वह अपने जीवन में अपनी कहानी स्वयं लिख सकती है, यही मेरा आप सबको संदेश है।
1: आज हमारे साथ जुड़ने और इस खास व प्रेरणादायक पहल की जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, अगर आप भी इन बहनों की मेहनत को सराहना चाहते हैं तो स्थानीय हस्तशिल्प को जरूर बढ़ावा दें, क्योंकि जब दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो हर महिला अपने आप में एक क्वीन है। आइए इसी पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म क्वीन का ये गाना।

0: दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की चाह में कहीं हम उस पर जरूरत से ज्यादा दबाव तो नहीं डाल रहे? आज बात करेंगे टाइगर पेरेंटिंग यानी ऐसे सख्त पालन पोषण की जहां पढ़ाई, अच्छे नंबर और अनुशासन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन क्या हर समय की अपेक्षाएं और निगरानी बच्चों के आत्मविश्वास को मजबूत करती हैं या फिर उनके मन में तनाव, घबराहट और अकेलेपन की भावना पैदा कर देती है? तो सवाल यही है, क्या बच्चे डर से आगे बढ़ रहे हैं या भरोसे से? इन्हीं अहम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पेरेंटिंग कोच डॉक्टर जैनब माटे।
1: आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: भोपाल के सभी श्रोतागण को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार।
1: सबसे पहले तो आसान शब्दों में हमारे श्रोताओं को बताइए कि टाइगर पेरेंटिंग और हेल्दी पेरेंटिंग के बीच की वो पतली लकीर क्या है जो पेरेंट्स अक्सर पार कर जाते हैं।
2: बहुत ही अच्छा सवाल है शीतल, क्योंकि सबसे पहले अंतर जानना बहुत जरूरी है, तभी तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। देखिए, टाइगर पेरेंटिंग और हेल्दी पेरेंटिंग के बीच की वो पतली लकीर है गाइडेंस और कंट्रोल का फर्क। इसे ऐसे समझिए कि हेल्दी पेरेंटिंग कहती है मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर असफल भी हुए तो हम मिलकर सीखेंगे। यहाँ फोकस बच्चे के प्रयास और उसकी खुशियों पर होता है। टाइगर पेरेंटिंग कहती है तुम्हें हर हाल में फर्स्ट आना है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ अनुशासन डर बन जाता है और फोकस सिर्फ मार्क्स, परफेक्शन और प्रोग्रेस पर टिकता है।
1: जी, हम ये समझना चाहेंगे कि टाइगर पेरेंटिंग की ऐसी कौन सी आदतें या व्यवहार हैं जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे गहरा असर डालते हैं।
2: टाइगर पेरेंटिंग का मतलब है हाई कंट्रोल, हाई प्रेशर और लो इमोशनल स्पेस। इसके कुछ क्लियर सिग्नल्स हैं जिनसे पेरेंट्स पहचान सकते हैं कि कहीं वे अनोइंगली टाइगर पेरेंटिंग तो नहीं कर रहे। बच्चे से हमेशा परफेक्शन और परफॉर्मेंस की उम्मीद रखना, मार्क्स रैंक के अचीवमेंट्स के आधार पर उनकी सेल्फ वर्थ को जज करना, आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू वाली अथॉरिटेरियन अप्रोच रखना, बच्चे की इमोशंस को डिसमिस करना, जैसे डोंट क्राई, बी स्ट्रॉन्ग, स्टॉप बीइंग टू इमोशनल, ये सब टाइगर पेरेंटिंग में आता है। साइकोलॉजी क्लियरली बताती है कि जब बच्चे को चॉइस, वॉइस और वैलिडेशन नहीं मिलती तो उनका क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे बच्चे बाहर से फियर बेस्ड ओबीडियंस दिखा सकते हैं लेकिन अंदर से इमोशनली इनसिक्योर हो जाते हैं। इसका असर धीरे धीरे उनकी सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। इसीलिए पेरेंटिंग का लक्ष्य सिर्फ ओबीडियंट बच्चे बनाना नहीं बल्कि इमोशनली सिक्योर, रेजिलियंट और हैप्पी बच्चे तैयार करना होना चाहिए।
1: तो क्या टाइगर पेरेंटिंग का असर सिर्फ तनाव तक सीमित रहता है या लंबे समय में ये बच्चे के आत्मविश्वास, रिश्तों और व्यक्तित्व पर भी असर डाल सकता है?
2: बहुत सही सवाल किया आपने शीतल, ये एक बहुत ही

0: इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो स्ट्रेस इमीडिएट इफेक्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट ज्यादा गहरा होता है। रिसर्च बताती है कि टाइगर पेरेंटिंग से पले बड़े बच्चे अक्सर एंग्जाइटी डिसऑर्डर, लो सेल्फ एस्टीम, इमोशनल सेपरेशन, डिप्रेशन की तरफ ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। कई टीनेजर्स बाहर से आपको बहुत सक्सेसफुल दिखेंगे, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अंदर से इमोशनली एग्जॉस्ट होते हैं। अगर हम ब्रेन साइंस के हिसाब से बात करें तो कॉन्स्टेंट प्रेशर से बच्चों में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, जो डिसीजन मेकिंग में सबसे अहम भूमिका निभाता है और इमोशनल रेगुलेशन के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एक फैक्ट है कि प्रेशर लॉन्ग टर्म में ज्यादा गहरा प्रभाव डालता है।
1: अगर माता पिता बच्चों को अनुशासित भी रखना चाहते हैं और उनका आत्मविश्वास भी बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: नाइस क्वेश्चन, क्योंकि आज के जमाने में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, पर कॉन्फिडेंस प्रेशर से नहीं कनेक्शन से बनता है, ये पेरेंट्स को समझना होगा। इसीलिए मैं पेरेंट्स को अपना सिग्नेचर 5C रूल अपनाने की सलाह दूंगी, जिसमें पहला है कनेक्शन। पहले रिश्ता मजबूत करें, फिर सुधार करें। दूसरा कम्युनिकेशन, बच्चे की बात बिना जज किए सुने। तीसरा चॉइस, उम्र के अनुसार छोटे छोटे डिसीजंस उन्हें लेने दें, इससे भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। चौथा कंसिस्टेंसी, नियम स्पष्ट हो लेकिन प्यार और सम्मान के साथ। और पांचवा सी इस करेक्शन, नॉट क्रिटिसिज्म। गलती पर बच्चे को नहीं उसके व्यवहार को सुधारें, गलत बच्चे को नहीं उसके उस व्यवहार को कहें। याद रखिए, बाउंड्रीज बच्चे को रोकती नहीं है बल्कि उन्हें सुरक्षित महसूस कराती हैं। जब बाउंड्रीज में एम्पैथी जुड़ जाती है तभी बच्चे सच में कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं।
1: और आखिर में हमारे सभी पेरेंट्स के लिए आपका क्या संदेश होगा?
0: सभी पेरेंट्स को मेरा ये संदेश है कि बच्चों को परफेक्ट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट, संवेदनशील और आत्मविश्वासी बनाइए, और इसकी शुरुआत होती है प्यार, सम्मान और जुड़ाव से।
1: टाइगर पेरेंटिंग जैसे जरूरी विषय पर इतनी आसान और काम की बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच शीतल।
1: तो श्रोताओं, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने परिवार के प्यार, भरोसे और साथ की। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आइए सुनते हैं फिल्म हे बेबी का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ चला है और अब स्टूडियो की घड़ी भी इशारा कर रही है कि आज के इस सुहाने सफर को यहीं विराम दिया जाए। तो दोस्तों, जिंदगी हर सुबह हमें एक कोरा कागज देती है जिस पर हमें अपनी मेहनत, अपनी उम्मीदों और अपनी मुस्कान से एक नई कहानी लिखनी होती है। आज का ये दिन, ये नया अवसर आपका है, इसे पूरे दिल से जिएं। मैं हूं आपकी रेडियो साथी शीतल अटकड़े, अब आपसे लेती हूं विदा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।

0: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों की गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
4: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
3: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
1: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
1: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
0: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
1: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
2: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264

0: किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब आईटी नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस।

जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल, इतना हौसला देख कर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे।

0: तरन्नुम खान।
1: अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। जी हाँ, ये अकवाल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम हर हिंदुस्तानी बहुत इज्जत, मोहब्बत और फ़ख्र से लेता है। एक ऐसी शख्सियत जिनका कुल असासा एक घड़ी, 6 कमीज, 4 पतलून, 3 सूट, 1 जोड़ी जूते और 2500 किताबें थीं। आपकी ये कुल जायदाद जो आप छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हुए, इसका तजज़िया करने पर ये अंदाज़ा होता है कि आपको दुनिया की चीज़ों और दिखावे में कतई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि लिखने पढ़ने का ज़ोक़ व शौक़ आला दर्जे का था। डॉक्टर उबल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम हिंदुस्तान की रियासत तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में पैदा हुए। उनके वालिद माहीगीर थे और ख़ानदान की माली हालत नाजुक थी। इसके बावजूद अब्दुल कलाम ने अपनी इब्तदाई तालीम रामेश्वरम के स्कूल में हासिल की, जो कि एक सरकारी स्कूल था। स्कूल में आप अच्छे नंबरात हासिल नहीं कर पाते थे, लेकिन आपका शुमार मेहनत करने वाले तुलबा में शामिल होता था। मैट्रिक के बाद आपने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से तिब्बियात में ग्रेजुएशन किया, फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। आपकी मेहनत और लगन ने आपको हिंदुस्तान के बेहतरीन तालीमी इदारों में जगह दिलवाई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी पेशेवराना जिंदगी का आगाज हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती इदारे इसरो से किया। उन्होंने हिंदुस्तान के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर काम किया, जिसने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को कामयाब बनाया। बाद में उन्होंने हिंदुस्तानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में शामिल होकर हिंदुस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की क़यादत की। इसके तहत हिंदुस्तान ने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल तैयार किए, जिसकी वजह से आपको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। आपने मुतअद्दिद मिसाइलों की तैयारी और तजुर्बे में अहम किरदार अदा किया, जिसमें अग्नि और पृथ्वी मिसाइल शामिल हैं। आपकी अनथक मेहनत और लगन की वजह से हिंदुस्तान दिफाई मैदान में खुद कफील हो सका। 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के 11वीं सदर बने। आपकी सदारत के दौर में आपने नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए मुल्क भर में दौरे किए और तालीमी इदारों में लेक्चर दिए। वो नौजवान नस्ल को ख्वाब देखने और उन ख्वाबों की हकीकत बनाने की तरगीब देते रहे। आपका मानना था कि कामयाब होने के लिए मेहनत करें। आप कहते हैं, कामयाबी की कहानी कभी ना पढ़ें, इससे आपको सिर्फ एक पैगाम मिलेगा। नाकामी की कहानी पढ़ें, इससे आपको कामयाब होने की कुछ नज़रियात मिलेंगे। इसी तरह आपका मानना था कि अपनी ज़िंदगी के लिए छोटे मकासद का तायुन नहीं करना चाहिए, बल्कि अजीम मकसद का तायुन करना चाहिए, जो कि आप कुछ इस तरह कहते हैं, छोटा मकसद जुर्म है, अजीम मकसद रखो। छोटे मकसद को आपने जुर्म ही करार दे दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मुतअद्दिद किताबें तसनीफ की, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स शामिल हैं। इन किताबों में उन्होंने अपनी जिंदगी के तजुर्बात और ख्यालात को शामिल किया है, जो नौजवानों के लिए मशाले राह हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक अजीम साइंसदान, मुअल्लिम और हिंदुस्तान के साबिक सदर रहे। आपकी शख्सियत और किरदार ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मुतासिर किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी सादगी और आजिजी का मुजस्मा थी। आपने अपनी जिंदगी को हमेशा सादा रखा और कभी भी दौलत या शोहरत के पीछे नहीं भागे। आपका रहन सहन बहुत मामूली था और आप हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कामयाबियों का राज उनकी मेहनत और लगन में पोशीदा है। आप कभी भी मुश्किल हालात का सामना करने से पीछे नहीं हटे और हमेशा मेहनत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। आपकी अनथक मेहनत की वजह से हिंदुस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी में खुद कफील बनाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने

घर हुआ है। और दोस्तों ये गजल से कुछ शेर यूं भी के उसे हमारी खबर नहीं है ये सच नहीं है, उसे हमारी खबर नहीं है ये सच नहीं है, इधर है जो कुछ उधर नहीं है ये सच नहीं है, उसे हमारी खबर नहीं है ये सच नहीं है, इधर है जो कुछ उधर नहीं है ये सच नहीं है, और जमाना उलझा हुआ है खुद में ये सच है लेकिन, जमाना उलझा हुआ है खुद में ये सच है लेकिन, किसी की हम पर नजर नहीं है ये सच नहीं है, जमाना उलझा हुआ है खुद में ये सच है लेकिन, किसी की हम पर नजर नहीं है ये सच नहीं है, और तुम्हें है जिद्दत पसंद ये है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें है जिद्दत पसंद ये है तुम्हारी मर्जी, रिवायतों में असर नहीं है ये सच नहीं है, तुम्हें है जिद्दत पसंद ये है तुम्हारी मर्जी, रिवायतों में असर नहीं है ये सच नहीं है। और एक गजल से दो तीन शेर यूं भी कहे के अपने लहजे को ना तलवार करो प्यार करो, अपने लहजे को ना तलवार करो प्यार करो, दुश्मने जहाँ पे पलट वार करो प्यार करो, अपने लहजे को ना तलवार करो प्यार करो, दुश्मने जहाँ पे पलट वार करो प्यार करो, तुमसे मिलने की हर एक शख्स तमन्ना ही करे अपना ऐसा मियाँ किरदार करो प्यार करो, तुमसे मिलने की हर एक शख्स तमन्ना ही करे अपना ऐसा मियाँ किरदार करो प्यार करो, तुम हो इंसान मोहब्बत है तुम्हारी फितरत, तुम हो इंसान मोहब्बत है तुम्हारी फितरत, अपने जज्बात का इजहार करो प्यार करो, तुम हो इंसान मोहब्बत है तुम्हारी फितरत, अपने जज्बात का इजहार करो प्यार करो। और एक गजल से कुछ ये के चेर के हमेशा गर्दिशे शामों शहर में रहता है, हमेशा गर्दिशे शामों शहर में रहता है ये आफताब मुसलसल सफर में रहता है, हमेशा गर्दिशे शामों शहर में रहता है ये आफताब मुसलसल सफर में रहता है, वो समर भी फूल भी पत्ते हवा भी साया भी, समर भी फूल भी पत्ते हवा भी साया भी, खुदा का एक करिश्मा शजर में रहता है, समर भी फूल भी पत्ते हवा भी साया भी, खुदा का एक करिश्मा शजर में रहता है, तो जो दिख रहा है वही देखते हो तुम तो बस, जो दिख रहा है वही देखते हो तुम तो बस, तुम्हें खबर नहीं क्या क्या सफर में रहता है, जो दिख रहा है वही देखते हो तुम तो बस, तुम्हें खबर नहीं क्या क्या सफर में रहता है। और एक गजल से कुछ शेर यूं भी के रब से उम्मीद लगाता हूँ खसारा करके, रब से उम्मीद लगाता हूँ खसारा करके, वो ही बिगड़ी को बनाता है इशारा करके, रब से उम्मीद लगाता हूँ खसारा करके, वही बिगड़ी को बनाता है इशारा करके, वो सब बता देते तुम्हें इश्क किसे कहते हैं, सब बता देते तुम्हें इश्क किसे कहते हैं, तुमने देखा ही नहीं जिक्र हमारा करके, सब बता देते तुम्हें इश्क किसे कहते हैं, तुमने देखा ही नहीं जिक्र हमारा करके, वो तेरे हाथों में हूँ जो चाहे बना दे मुझको, तेरे हाथों में हूँ जो चाहे बना दे मुझको, खुद को रखा है तेरी चाक पे गारा करके, तेरे हाथों में हूँ जो चाहे बना दे मुझको, खुद को रखा है तेरी चाक पे गारा करके, वो कहकशां देखने आना कभी हुजरे में मेरे, कहकशां देखने आना कभी हुजरे में मेरे, मैंने रखा है चरागों को सितारा करके, कहकशां देखने आना कभी हुजरे में मेरे, मैंने रखा है चरागों को सितारा करके। और शेर आखिर के लौट सकता था बहारों का वो मौसम फिर से, लौट सकता था बहारों का वो मौसम फिर से, हमने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके, लौट सकता था बहारों का वो मौसम फिर से, हमने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके, रब से उम्मीद लगाता हूँ खसारा करके, वो ही बिगड़ी को बनाता है इशारा करके। और एक गज़ल से कुछ शेर यूँ भी कहें कि तमाम शहर के दिल में है उसका घर फिर भी, तमाम शहर के दिल में है उसका घर फिर भी,

0: है दर बदर फिर भी, तमाम शहर के दिल में है उसका घर फिर भी, अजीब शख्स है फिरता है दर बदर फिर भी, तेरे बगैर तो एक पल भी जीना मुश्किल था, तेरे बगैर तो एक पल भी जीना मुश्किल था, तेरे बगैर मगर हो गई बसर फिर भी, तेरे बगैर तो एक पल भी जीना मुश्किल था, तेरे बगैर मगर हो गई बसर फिर भी, जहाँ यकीन हो पुख्ता वहाँ नहीं होंगे, जहाँ यकीन हो पुख्ता वहाँ नहीं होंगे, कोई भी हीला बहाना अगर मगर फिर भी, जहाँ यकीन हो पुख्ता वहाँ नहीं होंगे, कोई भी हीला बहाना अगर मगर फिर भी, और शेर आखिर हमारे बाद भी होगा जहाँ में इश्क मियाँ, हमारे बाद भी होगा जहाँ में इश्क मियाँ, मगर ये सच है कि रह जाएगी कसर फिर भी, हमारे बाद भी होगा जहाँ में इश्क मियाँ, मगर ये सच है कि रह जाएगी कसर फिर भी। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सामईन, अभी आपने जनाब फाजिल खान का खूबसूरत कलाम समाप्त फरमाया। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम आईना अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अब आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है उर्दू प्रोग्राम आईना, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। इसी के साथ रिश्ता को इजाज़त दीजिए। आदाब।

सुनिए आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा, प्रतिदिन शाम 7:20 से

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है निवाड़ी जिले की चिट्ठी, आलेख प्रादेशिक समाचार एकांश, वाचन स्वर दीपा सिंह। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे की। कल डॉ. यादव ने निवाड़ी जिले में करीब 193 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने निवाड़ी को प्रदेश की अयोध्या बताते हुए कहा कि ओरछा में भगवान राम के राम राजा लोक का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने रिमोट के जरिए नवनिर्मित संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन और जिला अस्पताल का लोकार्पण किया। निवाड़ी दौरे के दौरान वे ओरछा भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने श्री राम राजा सरकार मंदिर में दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद प्रशासनिक स्तर पर जिले में गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में नवागत एसडीएम विनीता जैन ने क्षेत्र के सभी पटवारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री शत प्रतिशत पूरी करने, सीएम हेल्पलाइन के शिकायतों का त्वरित निराकरण करने, सीमांकन और बंटवारे के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर जमुना भिड़े ने पिछली साप्ताहिक जनसुनवाई में प्राप्त 80 आवेदनों पर सुनवाई की। उन्होंने सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, भूमि कब्जे से जुड़े मामलों में अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर जांच पीड़ितों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी एक और खबर है। नवागत अपर कलेक्टर और अपर जिला दंडाधिकारी इकबाल मोहम्मद ने कलेक्टर कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए निवाड़ी तिगैला स्थित पुरानी मंडी परिसर क्या अस्थायी बस स्टैंड से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। प्रशासनिक अमले ने जेसीबी की मदद से अस्थायी दुकानों और अवैध निर्माणों को हटाया। शिक्षा क्षेत्र से

जुड़ी खबरों की बात करें तो जिले के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने 45 नौ चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की है। जिला शिक्षा अधिकारी उन्मेश श्रीवास्तव ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें प्राथमिक स्तर पर खेल और संगीत के 3 शिक्षक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 42 शिक्षक शामिल हैं। समग्र शिक्षा के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक रोहित शुक्ला ने लड़वारी के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और झुकियाई के शासकीय हाई स्कूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में लड़वारी विद्यालय में अवकाश प्रक्रिया में लापरवाही पर प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया। रोजगार के क्षेत्र में जिले के शासकीय पीजी कॉलेज में युवा संगम के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। मेले में 8 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 220 आवेदकों ने हिस्सा लिया। इनमें से 115 युवाओं का प्राथमिक चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया, जबकि 2 आवेदकों का अप्रेंटिसशिप के लिए चयन हुआ। नगर विकास से जुड़ी खबर में नगर परिषद अध्यक्ष नीलू केशव खटीक और मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरविंद कुमार तिवारी ने वार्ड क्रमांक 5 और 6 में डोर टू डोर भ्रमण कर पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने नागरिकों से जल आपूर्ति, पानी के प्रेशर और स्वच्छता की भी जानकारी ली। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिले में बच्चों की बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य से दस्तक अभियान 2026 की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत स्वास्थ्य दल घर घर पहुंचकर 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में संभावित हादसों की रोकथाम और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर ने जिले के सभी संवेदनशील जल स्रोतों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नदियों, तालाबों, बांधों और जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां चेतावनी बोर्ड, फेंसिंग और बैरिकेडिंग लगाने के लिए कहा गया है। नशा मुक्ति अभियान के तहत जिले में नशे से दूरी है जरूर 2.2 जनजागृति अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शासकीय पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कचरा प्रबंधन को लेकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर सहित जिले के अधिकारियों ने सहभागिता की। अधिकारियों को कचरा पृथक्करण, वैज्ञानिक निस्तारण, बल्क वेस्ट जनरेटर की जिम्मेदारी तय करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर स्पॉट फाइन लगाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना में उद्योग, सेवा, कृषि आधारित परियोजना, एग्रो प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों के लिए ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री धनधान्य योजना के तहत पात्र किसान ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी निमाड़ी जिले की चिट्ठी। आलेख प्रादेशिक समाचार एकांश का था, वाचन था दीपा सिंह का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है गीत सागर।

गीत सागर कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, अक्सर हम देखते हैं कि मोबाइल पर जो है वो ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट आते रहते हैं, तो ये मोबाइल पर आने वाले मौसम के अलर्ट का क्या मतलब होता है? ये कई बार जो है वो

बच्चों को भी इसके बारे में पता नहीं होता है, और कई बार जो है वो हमारे घर के जो एल्डर्स हैं वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो क्या हैं ये अलर्ट्स, जानते चलेंगे इस कार्यक्रम में। पहले ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, हम देखते हैं कि मोबाइल पर जो है वो कभी ऑरेंज अलर्ट आता है, कभी रेड अलर्ट। तो ऑरेंज अलर्ट का मैसेज आया है तो इसका क्या मतलब होता है? तो ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि मौसम जो है वो ख़राब हो सकता है, तेज़ बारिश, तेज़ हवा या आंधी आने की संभावना होती है। इसलिए लोगों को पहले से ही सावधान रखने के लिए ये संदेश जो है वो भेजा जाता है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: गीत सागर कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट के बारे में। तो ऑरेंज अलर्ट के बारे में तो हमने जाना, अब ये रेड अलर्ट क्या होता है? तो रेड अलर्ट जो है वो एक ऐसी चेतावनी होती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। इसका मतलब होता है कि बहुत तेज़ बारिश, बाढ़, तेज़ तूफान या दूसरी ख़तरनाक स्थिति आने की संभावना है। ऐसे समय में लोगों से घर के अंदर रहने और प्रशासन के निर्देश मानने को कहा जाता है। तो इस तरह से जो है वो हम ऑरेंज को और रेड अलर्ट को जो है वो समझ सकते हैं।
3: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना, ना।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट की। तो ये अलर्ट सिर्फ बारिश के लिए ही नहीं आती, बल्कि ये अलर्ट जो है वो तेज़ गर्मी, ठंड, आंधी, चक्रवात और दूसरे ख़तरनाक मौसम के लिए भी जारी किए जाते हैं। और ये अलर्ट भेजता कौन है? तो ये हमारे देश में भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है वो मौसम का अध्ययन करता है, और जब किसी इलाके में ख़राब मौसम की संभावना होती है तो वही लोगों को समय रहते जो है वो अलर्ट जारी करता है। तो अगर और इस तरह के जो अगर अलर्ट आते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो यही है कि घबराना नहीं चाहिए, और जो भी अलर्ट है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए और परिवार और के लोगों को और बड़ों को बताकर मौसम विभाग या प्रशासन की सलाह का जो है वो पालन करना चाहिए।

तो श्रोताओं, मौसम के अलर्ट हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि समय रहते सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए भेजे जाते हैं। इसलिए अलर्ट को हमेशा गंभीरता से लें और सही सलाह का पालन करें। और अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी शबाना को इजाज़त दें, क्योंकि अब वक्त हो चला है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गीत सागर, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग माला। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं माधव गुरी का गायन। राग है तोड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना माधवगढ़ी का गायन, राग था तोड़ी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों से अपना जुड़ाव मजबूत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए विकसित गांवों को विकसित भारत की नींव बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों का जनक बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के अवसर पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सीआरपीएफ ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया है। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। इसे केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। खंडवा में आज नई कृषि उपज मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव किसानों से संवाद करेंगे। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
2: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपकी रेडियो मित्र श्वेता। तो सभी को मेरा नमस्ते। एक बात आज मैं कहना चाहूंगी कि ना कोई ओहदा है, ना कोई रुतबा, ना कोई दिखावा होता है। दोस्तों से मुलाकात का मंजर ही सबसे जुदा होता है। खुलकर हम हंस लेते हैं, जी लेते हैं, दुख बांट लेते हैं, क्योंकि इस रिश्ते की हर बात प्यारी होती है। कुछ इस तरह की मुलाकात होती है आपकी और हमारी। तो आज फोन करें गीत सुने में हमें इंतजार है आपके फोन का। आप हमें फोन कर सकते हैं 2660902, बाहर के श्रोता साथी एसटीडी कोड 0755 लगाकर हमसे बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपने पसंदीदा गीत। तो इंतजार है हमें आपके फोन कॉल का। हेलो।
3: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
2: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
3: जी जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नाम बताएं अपना।
3: मैं उमरिया जिले के ग्राम न्यू दरबार से बात कर रहा हूं।
2: जी, आपका नाम?
3: राजभान विश्वकर्मा।
2: जी, फोन करें गीत सुने इसमें आपका फोन लगा हुआ है। और कैसे हैं आप बताएं?
3: हम ग्लाइंड पीरियड में चल रहे हैं मैडम जी, क्या बताएं?
2: जी जी जी जी, तो हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप हमारा जो रेडियो सुनते हैं प्रोग्राम सारे इसके।
3: जी जी जी।
2: गीत संगीत का शौक है आपको?
3: बहुत बहुत कुछ, आज कम से कम 40 वर्ष से।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो सुनते हैं गीत संगीत, आपको रुचि है इसमें। चलिए तो बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
3: आंदोलन फिल्म का है। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं भी तू जरा बता।
2: ठीक है, एक और मूवी बता दीजिए आप हमें जिसका गीत सुनना चाहेंगे।
3: एक है जीवन युद्ध का।
2: जी,
3: जीवन युद्ध।
2: जी जी बिल्कुल, तो इसी तरह आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए। और आपने फोन किया। जी जी,
3: लोग टुकुर टुकुर देखेंगे बजरिया में।
2: जी, बड़ा प्यारा सा गाना आपने पसंद किया है और आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, फोन करें गीत सुने।
0: जी आपका नाम बताएं।
1: जी मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले के मनकारी गांव से।
0: जी आपका स्वागत है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। बताइए कैसे हैं आप।
1: बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आपका शुभ नाम।
0: जी मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: ओहो श्वेता जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार। बताइए कैसा मौसम है उधर का, छतरपुर का? बारिश हो रही है?
1: छतरपुर का श्वेता जी बहुत बढ़िया मौसम है। पानी अभी शाम के भी गिरा है और अभी सुबह तो बादल है, अभी तो नहीं गिरा है लेकिन शाम के बहुत अच्छी बारिश भाई। और लगभग लगभग बहुत अच्छा मौसम है और बहुत बढ़िया खेती किसानी भी बढ़िया है।
0: हाँ खेती किसानी भी अच्छी हो रही है।
1: हाँ लेकिन हाँ। बस इतना है कि जो तला तालाब है वो भर नहीं भर पा रहा है, बाकी के किसानी के हिसाब का तो पानी बहुत अच्छा बरस रहा है।
0: अभी तो और बरसेगा पानी, है ना? बहुत
1: जी
0: अच्छे
1: अभी
0: से
1: तो
0: बारिश
1: बहुत
0: होगी।
1: बाकी
0: बिल्कुल
1: है, अभी तो अभी 4-6 नक्षत्र मघा नक्षत्र भी बाकी है, अभी
0: जी
1: सोखा है।
0: जी तो बताएं कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: बिल्कुल श्वेता जी, फिल्म का नाम है साजन चले ससुराल और
0: जी
1: गीत के बोल हैं कि चाहत से है बेगानी मेरी सुबह शाम, मेरे दिल के कोरे कागज पे नहीं लिखा है कोई नाम।
0: बिल्कुल। तो ये प्यारा सा गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे।
1: और श्वेता जी शायद अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ हमारे मित्र हैं उनका नाम बोल लूं।
0: हाँ बोलिए।
1: जी सबसे पहले तो ये आपको डेडिकेट रहेगा गीत, और हमारे प्रेमदास बाबा जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, जितेंद्र पाल, मणिराम पाल जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, और हमारे चित्रकूट धाम से दिनकर सिंह जी हैं, और कानपुर से पूनम बहन है हमारी, पूनम पूनम जी,
0: जी जी
1: और हमारे जयपाल यादव जी हैं महोबा से। सारे जितने श्रोता माता है बहन है सभी को ये डेडिकेट रहेगा, और ये गीत लगभग पहली बार बज रहा होगा शायद आपकी
0: जी
1: आकाशवाणी से।

0: जी, मैं राजू यादव बुंदेलखंड हमीरपुर से।
1: जी तो कैसे हैं आप बताइए।
0: हम तो बहना जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं, और बगीचे में बैठे बैठे ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं।
1: बिल्कुल, सभी लोगों को इस तरह रहना चाहिए, है ना, मस्त
0: जी
1: व्यस्त
0: बहन,
1: अपने कामों में, है ना।
0: जी बहन, जी जी
1: तो बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
0: बहना जी, एक मूवी का नाम रहेगा रंग,
1: रंग, जी
0: रंग मूवी का कोई भी
1: हाँ
0: गीत चलेगा बहन।
1: बिल्कुल, तो चलिए हम यही चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें, और साथ ही साथ हमारे गानों को और रेडियो सेट के प्रोग्रामों को भी सुनें।
0: जी बहन, मैं राजू यादव ग्राम उपरह का श्रीरामपुर डेरा
1: जी
0: सरीला
1: जी जी
0: राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड से कुछ मित्रों
1: जी
0: को नाम ले लें बहन।
1: बताइए आपके मित्रों के नाम।
0: हमारे मित्र हैं लोकेन वर्मा जी हैं, गौतम राय भोले जी हैं, राजेंद्र गंगवार जी हैं, बलवान सिंह यादव हैं, छोटे यादव हैं, और अनूप कुमार राजपूत जी हैं।
1: जी तो इन सभी को भी मेरा बहुत नमस्कार, और आपने फोन किया और हमसे बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताएं आपका।
1: दीदी हम ग्रामा पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से दीदी मेहरबान सिंह नागल बोल रहे हैं।
0: मेहरबान सिंह नागर
1: नागल जी। दीदी
0: जी तो बताएं आप कैसे हैं।
1: बिल्कुल बढ़िया हैं और बस आकाशवाणी का बचपन से ही शौक है रेडियो सुनने का।
0: अच्छा,
1: और जो आप लोगों की बातचीत रहती है सुझाव देते हैं आप लोग हम बड़े ध्यान पूर्वक कार्यक्रम सुनते हैं।
0: कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद है रेडियो पर?
1: देखिए आपके कार्यक्रम एक तो जो फोन करें जी सुने तो जो भी हम सुन ले तो और भी अन्य भी कार्यक्रम आते हैं तो समय समय पे हम सब कार्यक्रम सुनते हैं।
0: चलिए हमें जानकर बड़ा अच्छा लगा कि आप इतनी ध्यान से हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: दीदी फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा लेकिन गीत के बोल हैं तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में।
0: फिल्म का नाम एक और बताएं आप, इसका बताएं।
1: चलिए
0: एक और बताइए मूवी का नाम।
1: चलो तो फिर फिल्म का नाम है
0: नहीं
1: आप
0: अपने
1: का सुनवा दें दीदी आप।
0: नहीं आप बताइए आप कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहें।
1: नहीं तो निगाहें का सुनवा दो आप।
0: निगाहें का चलिए
1: जी। गीत के बोले हैं सारा सारा दिन तुम काम करोगे प्यार कब करोगे।
0: बिल्कुल, तो देखिए आपने फोन किया इसके लिए।
1: मौसम कैसा है?
0: अच्छा है मौसम, बारिश भी हो रही है और काफी खुशनुमा हो गया है मौसम। जी आपके इधर भी बारिश हो रही है?
1: हमारे इधर तो बारिश नहीं हो रही है।
0: अच्छा चलिए हम यही कामना करते हैं कि आपके इधर भी खुशनुमा मौसम हो जाए। आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कौन दीदी बात कर रही हैं आप?
0: मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: जी है ना? तो दीदी आपकी बातचीत को देते हैं तो हम लोग भरपूर आनंद भी लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद, आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार,
1: धन्यवाद।

0: जी नमस्ते, कार्यक्रम
1: नमस्ते दीदी, नमस्ते।
0: फोन करे गीत सुने में स्वागत है आपका। नाम बताएं।
1: मैं सुरान पाल से गुर्जर बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, तो बताएं कैसे हैं आप,
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: आपकी जगह का नाम बताएं।
1: ग्राम बाबूपुरा,
0: जी
1: तहसील को जिला जालौन से बोल रहा हूँ।
0: जालौन से। जी तो बताएं, रेडियो सुनते हैं आप।
1: हाँ सुनते हैं, बहुत पहले से सुनते हैं।
0: जी, कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: गोपी का सुना दीजिए, रामचंद्र
0: जी गोपी का कौन सा गीत।
1: कहेगा इस यार से।
0: बड़ा प्यारा सा ये कह ले
1: जी
0: भजन है। क्या करते हैं आप।
1: मैं शिक्षक हूँ दीदी।
0: जी, टीचर हैं आप। अच्छा,
1: हाँ
0: चलिए तो आप रेडियो भी सुनते हैं अपने काम के साथ साथ, ये जानकर हमें खुशी हुई।
1: सुन लेते हैं, समय मिल जाता है।
0: जी खुशी हुई हमें ये जानकर, और आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, नाम बताएं आपका।
1: धर्मेंद्र हरवार, ग्राम बरोदी वल्लभ, जिला सागर, एमपी से बोल रहे मैम।
0: जी, तो कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम।
0: अच्छा, कैसा
1: आप
0: मौसम है
1: सुनाइए।
0: आपका उधर का, सागर का?
1: परसों परसों ग्रो तो पानू, अब 2 दिन होगा अभी नहीं गिरा।
0: अच्छा, तो राहत तो मिली है, होगी आपको
1: जी
0: ठंड,
1: मैम।
0: है ना? हाँ,
1: जी
0: और खुशनुमा वातावरण भी हुआ होगा।
1: जी जी मैम, काम लग गया थोड़ा थोड़ा।
0: जी, कैसा लगता है आपको बारिश का मौसम?
1: अच्छा लगता है मैम, हम लोगों की फसल, किसान लोग हैं, हमारे फसल को लाज पान चाहिए।
0: बिल्कुल, और अगर फसल अच्छी होगी तो हमारे कहना चाहिए देश की सारी व्यवस्था, है ना, सब कुछ अच्छा होगा।
1: जी अच्छी होगी।
0: हाँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो आप लोग कर रहे हैं हम सभी भारतवासियों के लिए।
1: जी मैम,
0: कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: फूल कांटे फिल्म का गाना सुनेंगे।
0: फूल और कांटे का कौन सा गीत?
1: जी, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है।
0: बिल्कुल, तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातें करके हमें अच्छा लगा। नमस्कार।
1: नमस्कार मैम।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: जी मैं तहसील सेंधवा मध्य प्रदेश से देवावाड़ी ले बोल रहा हूँ।
0: हाँ फिर से नाम बताएं आपका।
1: जी तहसील सेंधवा मध्य प्रदेश से देवावाड़ी ले बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, तो बताएं क्या करते हैं आप।
1: जी मैं तो दुकान चलाता हूँ मैडम जी।
0: अच्छा तो
1: हाँ,
0: साथ साथ रेडियो भी सुनते हैं।
1: बिल्कुल, आपके बेटे बेटे प्रोग्राम सुनता हूँ।
0: आपको कुछ क्या लाभ मिलता है, आपको रेडियो से जानकारी मिलती है?
1: हाँ मिलती है मैडम जी, अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, बढ़िया।
0: और
1: और मजा आता है, क्वालिटी भी अच्छी आती है।
0: जी जी, और साथ ही साथ मनोरंजन भी होता है आपका गानों से?
1: मनोरंजन भी होता है मैडम जी।
0: हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर। सुनते हैं आप प्रोग्राम हमारे, कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप या सुन पाते हैं बताएं।
1: ये फोन करेगी सुने और वो आपकी फरमाइश है और जो भी मतलब जो कार्यक्रम आते हैं फिल्मी की तरह सारे सारे प्रोग्राम सुनते हैं मैडम
0: जी। हमें जानकर खुशी हुई।
1: दुकान तो, दिन भर रेडियो चलते रहता है।
0: जी जी, हमें जानकर ये खुशी हुई। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी मुझे गीत सुनना है, गायकर मुकेश की आवाज़ है, मुझे फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, पर गीत के बोले जो हो रहे तार मिले नदी के तल जल में।
0: अच्छा,
1: जो हो रहे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन के जल में, वही जान लेना।
0: बिल्कुल, बड़ा प्यारा गीत है ये। और एक मूवी का नाम बता दीजिए आप जो आप सुनना चाहते हैं।
1: नाम बहुत बता दूं मैडम जी, वो फिल्म का नाम है अंकुश।
0: अच्छा जी, तो हम चाहेंगे
1: हमें देना दाता।
0: बिल्कुल, हम ये चाहेंगे कि आपकी पसंद का गीत हम आपको जरूर सुनवाएं। आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार,
1: धन्यवाद, थैंक यू।

0: तो ये था कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें, इसी आशा के साथ कि ये मुलाकातों का सिलसिला रहेगा जारी हमेशा। लेकिन अब मुझे दीजिए अनुमति आपकी रेडियो मित्र श्वेता की ओर से। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

सिंधित्व की खुशबू से सराबोर सिंधी कार्यक्रम सुनना न भूलें प्रत्येक रविवार प्रातः 9:30 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों से अपना जुड़ाव मजबूत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों को संबोधित

0: करते हुए विकसित गांवों को विकसित भारत की नींव बताया। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में डॉ. कलाम का अद्वितीय योगदान अविस्मरणीय रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा है कि सीआरपीएफ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर लड़ाई जीतकर गौरव के अनगिनत मील के पत्थर स्थापित किए हैं। खंडवा में आज नई कृषि उपज मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों से संवाद करेंगे। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर ने भगवान महाकाल के दिव्य भस्म आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना की। और मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश कार्यक्रम। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी की फरमाइश लिखने वाले हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। आइए आप सभी की फरमाइश पे सुनवाते हैं मीरा का मोहन फिल्म से ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं खुरैसी राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एल पी रोहित, लल्लू राम, पूरन, रोहित, छोटू और इनके परिवार के सभी सदस्य। नांदगेड़ी से लिखने वाले हैं प्रभाकर और आरती। आप सभी ने सुनना चाहा है नींद हमारी ख्वाब तो राजेंद्र किशन का तस बनाई मदन मोहन ने।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं इंदौर से अनिल, नेहा, सबीहा, कमल, पूरन, सुषमा और स्मिता। सिंहपुर बंडा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। आप सभी ने सुनना चाहा है साथ ही फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ दी है अनुराधा पौडवाल और साथियों ने नवाब आरजू के बोल हैं और नदीम श्रवण ने इसकी तर्ज बनाई।

शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित और इनकी परिवार के सदस्य, बटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नागर, अंजू और मोहित नागर, आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाज़ों में हाथी मेरे साथी फिल्म का नगमा, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: श्रोताओं, आइए आपको एक सूचना दे दें। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलाने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोकर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह संदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधि के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई।
1: सुनिए स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर रोचक जानकारियों का साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य

0: दर्पण प्रति सोमवार दोपहर 1 बजे।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल,
2: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कामिनी काय कांतारिक धारावाहिक का 12वां भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 12वां भाग। अब तक आपने सुना कि चंद्रसेन की अवंती में वैसिका से भेंट होती है। वो उसकी सादगी और बुद्धि से प्रभावित होकर उसे बहन बना लेता है। चंद्रसेन आश्रम जाकर भेषज्ञ त्रिलोचन को वैसिका के बारे में विस्तार से बताता है। अब आगे।

उज्जैनी से लौटा चंद्रसेन कुछ खिन्न था और कुछ प्रसन्न। खिन्न इसीलिए कि ठीक से उज्जैनी का दर्शन नहीं कर पाया। उसने देखा कि राजधानी में कहीं अवकाश ही नहीं है, जिसे देखो वही व्यस्त। कहीं धन पद वैभव के लिए प्रतियोगिता है, तो कहीं पेट को भरने की प्रतिस्पर्धा में मनुष्य नट विट भाट बन गया है। सुरा और सुंदरी का ऐसा निर्बाध विनिमय उसकी कल्पना से बाहर था। महामात्य के व्यवहार से वो प्रसन्न था और वैसिका के बंधु होने से आत्मगर्वित। एक दिन अवसर पाकर चंद्रसेन ने पूछ ही लिया।

0: आर्य त्रिलोचन, एक बात पूछनी है।
1: एक ही क्यों, दो तीन जितनी चाहे पूछिए, पर औषधि शोधन की गति मंद ना पड़े।
0: आपकी मुखाकृति वैशिका दीदी से बहुत साम्य रखती है।
1: कौन वैशिका?
0: बताया तो था आपको, वही जिन्हें मैंने उज्जैनी में अपनी दीदी माना है।
1: ओ हाँ, बताया तो था तुमने।
0: वे औचक मेरा मुंह देखती रही और फिर पूछा, तुम्हारे भेषज्ञ क्या दक्षिणत्य हैं?
1: फिर तुमने क्या कहा?
0: मैंने कहा, हमारे आश्रम में कोई किसी की कुल जाति आदि नहीं पूछता, इसलिए मैं नहीं जानता। किंतु उन्होंने आग्रह किया कि आपसे

0: पूछूं कि क्या आप दक्षिण देश से हैं और कलाधर हैं? यदि वे भी हैं तो क्या आपके बाएं कपोल पर किसी घाव का चिन्ह है? अरे आर्य, आपको क्या हुआ? आप स्वस्थ तो है ना आचार्य?
1: चंद्रसेन,
0: आचार्य
1: तुम्हारी दीदी की वह क्या होगी?
0: आश्चर्य आचार्य, वैशिका दीदी ने भी आपकी वय पूछी थी। निश्चित तो नहीं, 25 बरस के आसपास होगी।
1: चंद्रसेन,
0: आचार्य
1: मुझे तुरंत उज्जैनी जाना होगा।
0: आचार्य क्यों आचार्य?
1: मुझे लग रहा है कि तुम्हारी वैशिका दीदी ही मेरी सत्या दीदी है।
0: आचार्य ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
1: देखो मेरे बाएं कपोल पर क्षत का चिन्ह है।
0: अरे हाँ,
1: दीदी के साथ खेलते हुए एक वृक्ष के सूखी टहनी से मेरा कपोल छिल गया था।
0: अच्छा,
1: चिन्ह रह गया।
0: हाँ,
1: मैं दक्षिणित्य हूँ।
0: अरे
1: कलापरी की कोख से जन्म लिया है मैंने। हाँ। और गोदावरी की तुम्हारी दीदी की वह क्या होगी?
0: आश्चर्य आचार्य, वैशिका दीदी ने भी आपकी वह पूछी थी। निश्चित तो नहीं, 25 बरस के आसपास होगी।
1: चंद्रसेन,
0: आचार्य
1: मुझे तुरंत उज्जैनी जाना होगा।
0: आचार्य क्यों आचार्य?
1: मुझे लग रहा है कि तुम्हारी वैशिका दीदी ही मेरी सत्या दीदी है।
0: आचार्य ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
1: देखो मेरे बाएं कपोल पर क्षत का चिन्ह है।
0: अरे हाँ,
1: दीदी के साथ खेलते हुए एक वृक्ष के सूखी टहनी से मेरा कपोल छिल गया था।
0: अच्छा,
1: चिन्ह रह गया।
0: हाँ,
1: मैं दक्षिणित्य हूँ।
0: अरे
1: कलापरी की कोख से जन्म लिया है मैंने। हाँ। और गोदावरी की जल यात्रा में मेरा सब कुछ छिन गया था।
0: क्या वैशिका दीदी ने ये सब क्यों पूछा?
1: गोदावरी में हमारी नाव पर दस्यु आक्रमण हुआ था। हमारे सेवकों की हत्या करके दस्यु ने माँ की हत्या कर दी। मुझे गोदावरी में धकेल कर वो नौका का अपहरण करके ले गए। मैंने उन गिद्धों को माँ की मृत देह से आभूषण नोचते देखा है।
0: धैर्य रखिए,
1: मुझसा हतभागा कौन होगा? उस नौका पर मेरी सत्या दीदी थी। मुझे न जाने क्यों लगता है कि तुम्हारी वैशिका दीदी ही मेरी सत्या दीदी है। मैं घड़ी दो घड़ी में निकलता हूँ चंद्र।
0: आचार्य मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे वहां कई लोग पहचानते हैं। महामात्य, वैशिका दीदी, देवी वसुंधरा और स्यात महादेवी पिंगला भी। आपकी भेंट सुगम हो सकेगी।
1: नहीं, यह तुम्हारे बिना सब कार्य रुक जाएगा।
0: लेकिन आचार्य,
1: मेरे पीछे तुम औषधि वितरण और सामान्य उपचार का दायित्व देखते रहना। मैं निकलता हूँ।
0: ठीक है आचार्य।

0: आचार्य त्रिलोचन उज्जैनी पहुंचते हैं। वो सीधे महालय पहुंचते हैं और प्रहरी को परिचय देते हैं।
1: मेरा नाम त्रिलोचन है, सेवाश्रम का भेषज्ञ हूँ। 3 सप्ताह पहले मेरे सहयोगी चंद्रसेन यहाँ अश्व नीलमणि को लेकर आए थे। मुझे देवी वैशिका से भेंट करनी है।
2: मान्यवर, राजमहालय में प्रवेश केवल महामात्य के अनुमति पत्र से ही संभव है। हम विवश हैं कि आपको प्रवेश नहीं दे पाएंगे। यूं सूचना थे कि वैशिका देवी कल ही महादेवी के संग किसी यात्रा पर जा चुकी हैं।
1: कब तक लौटेंगी?
2: महादेवी के यात्रा कार्यक्रमों की जानकारी अमात्यों और आस्पदों को भी नहीं होती, और हम ठहरे साधारण सेवक। वह आज भी लौट सकती हैं और कल भी, या अठवारे पखवारे में भी। सब अनिश्चित है।
1: पर कहां से जानकारी मिलेगी?
2: मान्यवर, हमें क्षमा करें।
1: अच्छा, ये तो बता सकेंगे कि यहाँ एक चिकित्सक मृगांक दत्त रहते हैं। मेरे सहपाठी हैं, आप उनके आवास आदि की जानकारी दे सकेंगे?
2: जी जी, अवश्य मान्यवर। श्रीमान मृगांक दत्त उज्जैनी के सुविख्यात चिकित्सक हैं। आप यहाँ से निकलकर दक्षिणी मार्ग लें, आगे एक त्रिपथ आएगा, वहाँ बाएं मुड़कर चलें। कुछ ही दूरी पर उनका आवास और चिकित्सालय है। आप किसी से भी पूछ लें, धन्वंतरी कुंज।
1: सचमुच दर्शनीय है ये महानगरी, कनक श्रृंगा उज्जैनी। वैभव और ऐश्वर्य तो सर्वत्र बिखरा पड़ा है, किंतु संभवतः यह वास्तविक चित्र ना भी हो, कुछ ऐसा हो जो अदृश्य है। किसी ने कहा भी है कि हर वैभव के नीचे कोई हाहाकार दबा होता है। त्रिपथ पर चलते चलते पर्याप्त देर हुई, किसी से पूछ तो लूं कि विख्यात चिकित्सक मृगांक दत्त कहाँ निवास करते हैं। अरे बंधु ठहरिए।
3: जी मैं,
1: हाँ, यहाँ धन्वंतरी कुंज किस और है?
3: धन्वंतरी कुंज अर्थात चिकित्सक महाशय का आवास।
1: हाँ हाँ, वही भेषज्ञ मृगांक दत्त रहते हैं वहाँ।

0: किंतु आप तो स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं।
1: बंधु, मैंने आपसे मार्ग की जानकारी चाहिए है।
0: ओ, आप तो बुरा मान गए। क्षमा करें, मैंने तो इसलिए पूछा था कि यदि आप औषधि या उपचार के लिए जा रहे हैं तो आपका जाना व्यर्थ होगा, क्योंकि धनवंतरी कुंज में केवल श्रेष्ठियों और श्रीमंतों के उपचार का स्थान है।
1: तो मृगांक दत्त निर्धन वंचितों का उपचार नहीं करते?
0: अरे, निर्धन वहां पहुंचेगा ही क्यों? उनका उपचार इतना व्यय साध्य है कि श्रमिक और कृषक उपचार के स्थान पर मृत्यु को वरण्य मान लेते हैं। अरे नहीं, भ्रम में ना पड़िएगा। और भ्रम में पड़े भी क्यों ना आप, बाहर से आए प्रतीत होते हैं। अरे, राजधानी में भ्रम ना पाले जाए तो उसे राजधानी कौन कहेगा? और मुझे क्या करना, चार आवाज छोड़कर सीधे चले जाइए, धनवंतरी के कुंज में पहुंच जाएंगे। भीड़ होगी वहां, रथ और शिविकाओं का रोग ग्रस्त संकुल पहचान लेंगे आप।
1: लगता है बंधु, तुम किसी कारणवश मृगांक से रुष्ट हो। कुछ बातें रोचक हैं तुम्हारी। तुम्हारे साथ बैठना मुझे अच्छा लगता है। कभी अवसर आए तो अवश्य।
0: मैं नहीं मिलूंगा, मुझे आप में कोई रुचि नहीं है। मैं चला
1: गया। विचित्र जीव है वो, असंतुष्ट, संभवतः अपने आप से भी असंतुष्ट। ऐसे लोग भी होते हैं। भीड़ से भरा आवास आ गया, संभवतः मृगांक यहीं मिले।
2: अरे अरे, कहाँ घुसे चले जा रहे हो भाई?
1: मृगांक दत्त से मिलना है।
2: उपचार का समय समाप्त हुआ, कल प्रातः काल आना और अपना कर्मांक अंकित करवाना।
1: उपचार के लिए नहीं, भेंट के लिए आया हूँ। सहपाठी मित्र हूँ मृगांक का।
2: अन्यथा ना ले महोदय, मैं तो आज्ञा पालक अनुचर मात्र हूँ। स्वामी के अनुमति के बिना प्रवेश संभव नहीं है यहाँ।
1: और अनुमति कौन देगा? इन प्रवेश करने वाले लोगों को तुम रोक नहीं रहे, इनका ऐश्वर्य तुम्हारे कर्तव्य पालन में बाधक है, यही बात है ना? अस्तु, तुम मेरे आने की सूचना मृगांक को जाकर दो, या मैं वैसे ही प्रवेश करूं। तुम मुझे रोक ना पाओगे बंधु। हाँ, यदि मृगांक मिलना ना चाहे तो अलग बात है।
2: देव, आप इस कक्ष में जाकर विश्राम करें, मैं उनको खबर देता हूं।
3: त्रिलोचन अंदर कक्ष में जाकर ऊंचे स्वर में पूछते हैं,
1: श्रीमान मृगांक कहाँ है?
4: अरे दुष्ट त्रिलोचन, वर्षों से अता पता नहीं, आज आकाश से टपक पड़े अचानक। मैंने तो सोचा था कि कोई यक्षिणी तुम्हें उठाकर ले गई है। इधर बैठ। शुभंकर
2: जी,
4: तुम अतिथि कक्ष की व्यवस्था करो और बाकी के रोगियों को देख लो, मैं अब अवकाश लूंगा
2: जी।
4: मेरा बिछड़ा हुआ मित्र युगों बाद मुझे मिला है।

0: त्रिलोचन, तुम आए हो तो कुछ दिन रुको भी। वैसे भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे बल प्रयोग ही क्यों ना करना पड़े। तुम्हारे अपशब्द तो मेरे लिए नए नहीं है, और फिर तुम तो जानते ही हो कि मैं उतना ही नैतिक हूँ जितना आवरण के लिए आवश्यक है।
1: जानता हूँ।
0: बहुत समय से प्रतीक्षा थी कि स्मृतियों के पृष्ठ उलटूं और खोजूं कि कहाँ है मृगांक।
1: यह तुम कह रहे हो मृगांक? आश्चर्य है, तुमने तो 2 वर्षों की अवधि में ही ये सब वैभव, इतना सम्मान पा लिया है। तुम परम सुखी हो, तुम्हें कैसा क्लेश?
0: सभी बातें होंगी मित्र, तुम यहाँ कुछ दिन रुक जाओ बस। मेरे लिए तुम्हारी आंखों में जो विरक्ति, जो व्यंग है, उसके संग थोड़ी सी प्रतीति मुझे मिल जाए। तुम मेरे अनन्य और एकमात्र मित्र हो त्रिलोचन, सहपाठी। संसार में हमने साथ साथ अनुभव के गवाक्ष खोले थे, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? अच्छा ये तो बताओ कि उज्जैनी आने का तुम्हारा हेतु क्या है?

0: इतना तो मैं जानता हूं कि महाकाल के दर्शन करने तो तुम आए नहीं, और मेरे आवास तक पहुंचने की कृपा की तो वो भी मैत्री की उमंग में नहीं हुई होगी। फिर भी तुम जो चाहो, भ्रमण, वास, विलास या मेरा उपहास, करते रहना स्वतंत्रता पूर्वक। यहाँ रहोगे तो देखोगे कि जीवन से मैंने बंधना तो सीख लिया है, तथापि मैं नीच नहीं हुआ हूँ।
1: निश्चय ही तुम्हारे पास आने में मेरा स्वार्थ है मृगांक। स्वार्थ ना होता तो उज्जैनी आता ही क्यों? आकर भी संभव है कि तुमसे मिले बिना लौट जाता, पर यह मिलन भी अच्छा ही रहा। तुम्हारी जो छवि मेरे मन में बनी थी वो इस मिलन के बाद कुछ कुछ टूट रही है।
0: छवि तो एक मुखौटा है मित्र। मैं तुम्हें केवल ये दिखाना चाहता हूं कि अवंतिका राज्य धर्म और व्यापार का केंद्र है। तीनों यहाँ अपने उत्कृष्ट और निकृष्ट स्तर पर विद्यमान है। यहाँ निकृष्ट को परिष्कृत करके उत्कृष्ट के समकक्ष खड़े कर देना ही कौशल समझा जाता है, जिसके लिए असत्य का आश्रय लेना ही पड़ता है मित्र। इसलिए अनित्य, असत्य, सत्याभास यहाँ के प्रभु वर्ग की जीवन शैली में आ गए हैं। महाकाल का घंटा और भी वेग से बजता है। प्रार्थना के स्वर ऊंचे और ऊंचे होते जाते हैं। ये अवंतिका है मित्र। लेकिन तुम्हारे लिए आश्रम ही उचित स्थान है। तुम्हें सही स्थान पर ले जाकर पटका है देव ने कि पट्टियां बदलते रहो और कुष्ठ रोगियों, उन्मादियों, लूले लंगड़ों का उपचार करते रहो।
1: देखूंगा, तुम्हारी उज्जैनी भी देखूंगा। सांध कर्म से निवृत्त हो लूं, फिर जहां ले चलोगे मैं चलूंगा। अपने आने का हेतु भी तो तुम्हें बताना है।

0: दोनों मित्र उज्जैनी की वीथियों में रथ पर सवार होकर घूम रहे हैं।
1: हम जा कहां रहे हैं मृगांक?
2: आए हो तो उज्जैनी का दर्शन भी कर लो मित्र। प्रारंभ महाकाल से?
1: आज स्नान नहीं कर पाया हूँ, वस्त्र भी मलिन है, शुचिता का ध्यान भी तो रखना होगा।
2: फिर शिप्रा के इन घाटों की शोभा देखो मित्र। देखो तटवर्ती स्तंभ दीप जल में यूं प्रतिबिंबित हो रहे हैं जैसे एक समानांतर उच्च से आलोक प्रस्फुटित हो रहा हो। कितनी सुंदरियां दीप दान के लिए यहाँ पर पंक्ति वक्त खड़ी है। पता नहीं चलता कि दीप की दीप्ति उनके मुख पर है अथवा मुख से ही दीप्ति प्रकट हो रही है। ये उज्जैनी के श्रीमानों का घाट है। अभी कुछ देर में यहाँ रसिक समूह एकत्र होंगे, सुंदरियों में अपनी प्रेसी की कल्पना करेंगे और उन पर प्रणय पुष्प लीचेंगे। ये अवंती के शरदोत्सव का पूर्वाभ्यास है मित्र।
1: सचमुच मन भावन है ये दृश्य। किंतु मुझे सेवा आश्रम की स्मृति हो आई। वहां निर्धन अपन अशक्त रोगियों को छोड़कर आया हूँ। अधिक समय नहीं रुक पाऊंगा तुम्हारी इस अवंती में।

0: मैंने तुम्हें कहा था अवंती केंद्रीय नगर है, राज वाणिक और धर्म तीनों का केंद्र, किंतु समय नहीं है किसी के पास त्रिलोचन। सब कुछ है, समय नहीं। तुम जिससे भेंट करना चाहो वह अपनी व्यस्तता के कारण उपलब्ध नहीं होता। यहाँ अपना समय साथ रखना होता है मित्र, अवसर की प्रतीक्षा करनी होती है। महामात और महाभोग की नगरी है, यहाँ महाकाल हैं, यहाँ महामाया भी हैं, महाराज महारानी महामात्य महास्पद यही हैं, महासेन महाबलाधिकृत महाश्रेष्ठी महापंडित महानायिका और महाधूर्त और महालंपट भी, इनसे महानगर उज्जैनी की संरचना होती है मित्र। लो अब हम तुम्हारी उज्जैनी नगरी में पहुंच गए।
1: उनका रथ अब श्रमिक वर्ग की नगरी से निकल रहा होता।

0: सखा त्रिलोचन, ये भी उज्जैनी है किंतु ये कनक श्रृंगा नहीं है। यहाँ अनुचर, किंकर, दास कुलेक और हस्तिका बसते हैं। नदी तट पर जलते हुए चूल्हों की उठती हुई आग को देखते हो? वहाँ भुने हुए मांस की गंध से कुछ सुनने का प्रयास करो। अनेक कहानियां तुम सुन सकोगे। इस गंध में पसीना भी है और विवशता भी। मद की गंध और पथ के इधर उधर ग्राहक के साथ विनिमय के लिए प्रस्तुत रूप जीवाओं का सौंदर्य भी, यदि तुम उन्हें सुंदर कह सको तो।
1: ये मुझे कहां ले आए मृगांक? यहां तो सांस लेने में भी कष्ट है। ये तो नरक है, नरक।
0: मित्र, इसी नरक से चलकर मैं उस धनवंतरी कुंज तक पहुंचा हूँ। और त्रिलोचन, यहाँ मैं अब कभी वापस नहीं लौटना चाहता।

0: लोचन, राजधानी के दोनों चेहरे तुमने देख लिए, अब कहाँ चले बताओ?
1: आवासी लोग चले, मुझे और कुछ देखने की रुचि नहीं रही है। मृगान, तुम्हारा आना जाना राजप्रासाद में तो होता ही होगा।
0: हाँ, उत्सवों आयोजनों के अवसर पर मिलता रहता है, चिकित्सा के लिए जाने का अवसर कभी नहीं मिला।
1: अच्छा, मुझे ये ज्ञात करके बताओ कि महारानी पिंगला कहाँ गई हैं और वो कब तक लौटेंगी?
0: ओ, महारानी से भेंट करना है, सीधी छलांग लगा रहे हो मित्र। वैसे मैंने सुना है कि महाराज भर्तृहरि कहीं अज्ञातवास पर हैं और महारानी भी वहीं चली गई हैं। ज्ञात करने में कुछ समय तो लगेगा। मेरी एक रोगिणी है जिसका आना जाना अंतापुर में है, सुनते हैं कि वो महारानी के साथ चौसर खेलती है।
1: तो कल तक ज्ञात कर सकोगे? मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, परंतु इस संबंध में जानकारी मेरे लिए तुरंत आवश्यक है।
0: कब तक ठहर सकते हो मित्र?
1: सूचना मिल जाने तक, किंतु 2-4 दिन बस।
0: मैं कल प्रयास करता हूँ महादेवी के संबंध में जानकारी जुटाने का। पूछा इसलिए कि राजा और राज परिवार के आसपास सया से एक रहस्य का विषय जानबूझकर प्रचारित किए जाते हैं। वैसे सुना है अवंती राज परिवार के रहस्य ठीक ठीक बस 3 ही व्यक्ति जानते हैं।
1: कौन है वो?
0: महामात्य पूर्णरथ, अंतेवास का कंचुकी प्रमुख और पिछले वर्ष से चर्चा में आई एक दासी। कहा जाता है कि अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि की है वो। राजा भर्तृहरि, रानी पिंगला और महामात उसकी सलाह का सम्मान करते हैं। उस दासी का नाम है वयसिका।
1: तुमने वयसिका को देखा है मृगांक?
0: सार्वजनिक उत्सवों में दासियों को प्रायः अलग ही रखा जाता है। मैंने उसके कारण पर बहुत सोचा और मुझे लगता है कि कुछ दासियां अपनी स्वामिनियों से अधिक सुदर्शना और सुसंस्कृत होती हैं। अहम टूटता होगा उनका। वैसे मित्र, मैंने दूर से वयस्का को देखा है, सुंदर है, वय भी कम है। मेरा आशा है अपनी स्वामिनी महारानी पिंगला से।
1: तुम मुझे वयस्का से ही मिलवा दो मृगांक।
0: हाँ, ये अपेक्षाकृत सुगम होगा। लेकिन मित्र, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्यों मिलना चाहते हो महारानी से या वयसिका से। तुमने मुझे कोई कारण भी नहीं बताया। अच्छा ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा।

दूसरे दिन रगांक को ये सूचना मिल गई कि महारानी पिंगला किसी बड़े अनुष्ठान के लिए गुप्तवास में है। वैसिका भी उनके साथ ही गई है। वो दोनों कहाँ हैं ये बात चंपा भी नहीं जानती। केवल महामात्य पूर्ण रथ को उसका अनुमान है और राजा भर्तृहरि भी राजधानी में नहीं है। संभवतः वो भी अज्ञातवास पर कहीं निकल गए हैं।

अभियाप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 12वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार चेतना भारद्वाज, चंद्रसेन बद्रवास्ती, त्रिलोचन उबैदुल्ला खां, प्रहरी मनोज राजानी, व्यक्ति भागीरथ साहू, द्वारपाल वकार हुसैन और मृगांक बालेंद्र सिंह, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आपको याद होगा कि राजा महालय से निकल जाते हैं। रानी पिंगला को राजगुरु देवश्री ध्यान लगाकर बताते हैं कि राजा दक्षिण दिशा में हैं, वाहन और अस्त्र के बिना। व्यथित होकर रानी पिंगला राजा की वापसी के लिए कठिन अनुष्ठान का निर्णय करती हैं। इस प्रसंग से हम अगले भाग में परिचय प्राप्त करेंगे।

0: कामिनी काय कांतारे, इसकी 12वीं कड़ी का प्रसारण अभी आपने सुना संग्रहालय से के अंतर्गत। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 12:58 होने जा रहे हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों से अपना जुड़ाव मजबूत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए विकसित गांवों को विकसित भारत की नींव बताया। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन

विधेयक 2026 पेश कर रही है। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। प्रदेश की ई प्रवेश प्रणाली ने उच्च शिक्षा में प्रवेश का नया रिकॉर्ड बनाया। 24 जुलाई तक प्रदेश के कॉलेजों में करीब 4,80,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा है। दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने चंबल ग्वालियर अंचल में तैनात 14 निरीक्षक और उप निरीक्षकों को हटाकर नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 1 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन। आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जिंदगी बदल रही है, जिससे हमारी आदतें बदल रही हैं और साथ ही बदल रहा है हमारा जीने का तरीका। श्रोताओं, आज हमारी हथेली में मौजूद एक छोटी सी स्क्रीन हमें पूरी दुनिया से जोड़ती है। हम ज्ञान भी वहाँ लेते हैं, काम भी करते हैं, मनोरंजन भी वहीं ढूंढते हैं और अपनों से भी जुड़ते हैं वहीं। लेकिन श्रोताओं, सुविधा और आवश्यकता के बीच ये स्क्रीन अनजाने में हमसे बहुत कुछ छीन भी रही है। ये हमारी सेहत पर भारी पड़ रही है। श्रोताओं, आज का समय तकनीक से दूरी बनाने का नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाने का है, क्योंकि जब तकनीक समझदारी के साथ अपनाई जाती है, तभी वह जीवन को बेहतर बनाती है। यदि तकनीक का असंतुलित उपयोग किया जाए तो इससे कई समस्याएँ होती हैं। श्रोताओं, लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पर लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सूखापन, धुंधलापन, सिर दर्द, गर्दन और कमर में दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। कई लोग तो रात में भी देर तक स्क्रीन देखते रहते हैं, जिससे शरीर का प्राकृतिक नींद का चक्र प्रभावित होता है। इसका असर मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता, याददाश्त और कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। श्रोताओं, इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमें छोटी छोटी आदतों को अपनाना चाहिए, जिससे हमारी दिनचर्या को अधिक संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान हम बना सकते हैं। लगातार स्क्रीन देखने के बजाय हर 20 मिनट में लगभग 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखें। स्क्रीन की ब्राइटनेस और कमरे की रोशनी को संतुलित रखें। मोबाइल, कंप्यूटर का उपयोग करते समय सही पोस्चर में बैठें। गर्दन को झुकाकर लंबे समय तक स्क्रीन का उपयोग ना करें। यदि आपका काम लंबे समय तक स्क्रीन पर होता है तो बीच बीच में उठकर थोड़ा टहलें, शरीर को स्ट्रेच करें और पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीते रहें। सोने से एक घंटे पहले स्क्रीन का उपयोग ना करें और सबसे ज़रूरी, जब परिवार के साथ हो, भोजन कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, तब भी मोबाइल का उपयोग ना करें। यानी जब स्क्रीन की ज़रूरत हो तभी उसका उपयोग करें और हर दिन कुछ समय बिना स्क्रीन के भी अपने लिए निकालें। श्रोताओं, जिंदगी सिर्फ स्क्रीन के साथ नहीं, उसके बाद भी बेहद खूबसूरत है। कभी अपनों के साथ खुलकर हंसिए, कभी उगते सूरज को देखें, कभी पेड़ों की छांव में कुछ पल बिताएं और बिना किसी नोटिफिकेशन के अपनी दिल की धड़कनों को महसूस करिए।

0: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। श्रोताओं, बारिश का मौसम अपने साथ ठंडक और ताजगी तो लेकर आता है, लेकिन इसी मौसम में हमारी त्वचा और बालों को सबसे अधिक देखभाल की भी आवश्यकता होती है। तो किस तरह हम अपनी त्वचा और बालों की देखभाल करें, इस विषय पर आपको जानकारी दे रही हैं डॉक्टर पूर्वा शारदा और इनसे बातचीत की है महक गुप्ता ने।
1: नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वक्त आपकी ओपीडी में ज्यादातर मरीज किन बीमारियों के आपको देखने मिलते हैं?
2: क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो सबसे ज्यादा मरीज जो मेरे पास इस समय मेरी ओपीडी में आ रहे हैं वो पहले तो फंगल इन्फेक्शन, जिसको दांत खाज खुजली बोलते हैं, दूसरा बालों के झड़ने से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं, और तीसरा बिकॉज स्वेटिंग ज्यादा होती है, पसीना ज्यादा आता है, तो इसकी वजह से एक्ने के पेशेंट या पिंपल के पेशेंट्स भी अभी फिलहाल काफी ज्यादा हैं ओपीडी में।
1: आपने जैसे दांत खाद खुजली के पेशेंट्स बोले, तो ये किन वजहों से होते हैं ये बीमारियाँ?
2: दांत खाज खुजली पसीने की बीमारी है। अगर पसीना आप समय समय से अपने शरीर से हटा रहे हैं, या आप सूती के कपड़े पहन रहे हैं, या आप लूज कपड़े पहन रहे हैं, बहुत टाइट कपड़े जैसे कि जीन्स वगैरह है वो नहीं पहन रहे हैं, तो दांत की समस्या आपको नहीं होगी, है ना। बट अगर वही आपने टाइट कपड़े पहनने चालू कर दिए, आप बिल्कुल कुछ पाउडर नहीं लगाते हैं, आपका काम ही ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा पसीना आता है, तो फिर दांत की समस्या होना बहुत ही निश्चित है।
1: जी, तो इन बीमारियों से जैसा आपने बताया कि हम ढीले कपड़े पहन के, सूती कपड़े पहन के बच सकते हैं, सफाई बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा मैम आपने बताया कि पिंपल्स की समस्या, एक्ने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, फुंसी फोड़े ये बहुत ज़्यादा होते हैं बारिश के मौसम में, क्या इनका भी यही कारण है?
2: हाँ, मतलब जो ग्लैंड्स होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स, जिससे अपने आप शरीर में तेल निकलता है जिसकी वजह से या तो पसीना निकलता है, तो बारिश के समय में इनका ब्लॉकेज हो जाता है, तो ज्यादा तेल या ज्यादा पसीना निकलने की वजह से पिंपल भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है अभी फिलहाल ओपीडी में।
1: जी, क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं कि ये बीमारियां हमें ना हो?
2: जो दांत खाज खुजली होती है, फंगल इन्फेक्शन, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले ये जो मौसम होते हैं, गर्मी का मौसम और सबसे स्पेसिफिकली ये जो बारिश का मौसम

0: होता है,
1: जी
0: बिल्कुल सूती के कपड़े ही पहने, ढीले ढीले कपड़े पहने, जीन्स वगैरह इस मौसम में बिल्कुल भी ना पहने। दूसरा, अंडरगारमेंट्स जो पहनते हैं वो भी बिल्कुल लूज फिटिंग के पहने। तीसरा, किसी प्रकार का एंटी परस्पिरेंट या तो डिओड्रेंट या तो सबसे जो बेस्ट होता है किसी भी प्रकार का कोई भी एक पाउडर लगाएं। सुबह तो सब नहाते ही हैं, बट एक बार रात में सोने से पहले अपने शरीर पे जितना भी पसीना होता है, जितनी गंदगी होती है, मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका होता है कि फंगल इन्फेक्शन ना हो इस मौसम में, तो स्पेसिफिकली रात में नहाना ही चाहिए एक बार रात में सोने से पहले। तो मुझे लगता है इसके अलावा कोई एंटी फंगल सोप या किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको साफ़ सफाई रखनी है, अपने जो तकिए की खोली आप उसको भी साफ़ रखें, कपड़ों को भले ही बारिश का मौसम हो बट कोशिश करें कि वही पुराने कपड़े वापस ना पहने, साफ़ सुथरे कपड़े पहने।
1: जी, इसके अलावा इस मौसम में क्या मैम बालों की झड़ने की समस्या भी बढ़ जाती है?
0: डेफिनेटली बढ़ जाती है बालों की समस्या। मतलब यही मौसम होता है जब मुझे लगता है सबको लगता है कि हमारे बाल झड़ जाएंगे। मॉनसून आता है, बारिश आती है, बाल झड़ने लगते हैं। हमारे जो बालों का स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा होता है कि अगर पानी हमारे बालों पे बहुत देर तक पड़ा रहता है तो हमारे बालों के अंदर किसी प्रकार के ना पोर्स होते हैं जिसकी वजह से पानी बालों के अंदर चला जाता है, उसकी वजह से जो बलूनिंग हो जाती है बालों की, थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है बालों में। तो अगर किसी भी चीज़ में स्वेलिंग हो जाएगी तो वो उसके ब्रेक होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो मैं सारे पेशेंट्स को यही बोलती हूँ जिनको भी हेयर फॉल की समस्या स्पेसिफिकली मॉनसून्स के वेदर में होती है, अगर कोई दूसरा न्यूट्रिशनल कॉज ना हो कि खून में कोई इसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो मैं अगर सिर्फ मॉनसून से रिलेटेड होता है मैं बोलती हूँ कि मॉनसून में पहली बात तो बाल सबसे पहले तो धोना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाल नहीं धो रहे हो, हर दूसरे दिन बाल धो। अगर बारिश के मौसम में अगर आपने बाल धोए हैं या बारिश में भीगने की वजह से आपके बाल गीले हो गए हैं, तो बाल पहली बात तो गीले कभी भी नहीं रखने हैं। आप घर जब भी पहुंचे या आप ऑफिस पहुंचे, आप एक जो सॉफ्ट वाले टॉवल्स आते हैं, जो फाइबर वाले टॉवल्स आते हैं, उससे पहली बात तो बाल अच्छे से सुखाएं। और जो ड्रायर होता है, ड्रायर में दो मोड होते हैं, तो एक हॉट हीट आती है या कोल्ड आती है। कोल्ड पे रख के मुझे लगता है सबको सुखा लेना चाहिए
1: जी,
0: है ना, ताकि अगर बाल सूखे रहेंगे तो फिर उसमें बलूनिंग नहीं होगी, बालों में स्वेलिंग नहीं होगी और उसकी वजह से बाल ब्रेक नहीं होंगे और आपके बाल बचे रहेंगे।
1: जी मैम, एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सिर्फ टीनेजर्स में ही नहीं, हर उम्र के लोगों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर हम स्किन की या बालों की बात करें तो। तो आपके पास कोई सुझाव है हर उम्र के लोगों के लिए?
0: ओवरऑल सबको मैं बात करूँ तो मुझे लगता है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका स्किन का टाइप क्या है, है ना। स्किन का टाइप डिफाइन हो जाता है जब आप टीनेजर से आप स्टार्ट करते हो कि किसी का ऑयली स्किन होता है, मतलब ज़्यादा तेल वाला स्किन होता है, या किसी का बहुत ही रूखा स्किन होता है, बहुत ड्राई स्किन होता है, या कभी कभी पेशेंट होते हैं कुछ भी लगाने से स्किन सेंसिटिव टाइप होता है, या कभी कभी पेशेंट्स का स्किन टाइप कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कहीं से ड्राई कहीं से ऑयली। तो पहले तो जानकारी पता होना चाहिए कि अपना स्किन का टाइप क्या है। जब स्किन का टाइप आपको पता है उसके बाद आपको, मुझे लगता है दो चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक सबसे पहली चीज़ तो एक अच्छा मॉइस्चराइजर जो आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो, और दूसरा सनस्क्रीन, है ना। सनस्क्रीन भी ऐसा नहीं कि कोई भी सनस्क्रीन, सनस्क्रीन में भी बहुत प्रकार की वैरायटी आती है। मैं बोलूंगी कोई भी एक डॉक्टर रिकमेंडेड जो सनस्क्रीन होता है ना, क्योंकि उसमें पता है कि भाई अगर SPF 30 है तो SPF 30 ही है, ना कि 5 और 6। तो मुझे लगता है ये दो चीज तो सबको लगानी ही चाहिए, चाहे बच्चे हो चाहे प्रेग्नेंट हो, चाहे, मुझे लगता है आज डॉक्टर की सलाह लेके आप ये दो चीजें तो मुझे लगता है हर इंसान को लगानी चाहिए। इसके बाद एक अच्छा फेस वॉश होना चाहिए। फेस वॉश का मतलब ये नहीं होता कि अगेन कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपका ड्राई स्किन है उसके लिए अलग आता है, ऑयली स्किन के लिए अलग आता है, ताकि अपनी जो त्वचा है उससे अच्छी तरीके से क्लीन हो और बहुत ज़्यादा रूखी भी ना हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। फिर आप धीरे धीरे मूव करते जाइए कि अगर कोई बच्चा है उसको एक्ने है तो उसको पता होना चाहिए उसको अपने चेहरे पे क्या लगाना है। कोई अगर लड़की है और उसको पिगमेंटेशन की समस्या है या उसको ऐसा लगता है टैनिंग की समस्या है, तो उसको पता होना चाहिए वो अपने स्किन पे कुछ एक चीज़ जो अपने चेहरे पे लगा सकती है। वही 30 में जब पेशेंट जाते हैं, 30 साल की उम्र में, तो उनको पता होना चाहिए उस समय रिंकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक प्रिवेंशन के तौर पे एक आध रेटिनॉल उनको लगाना चालू कर देना चाहिए। और 40 और 50 में तो क्या होता है रिंकल्स वगैरह बन जाते हैं, तो उस टाइम पे एक अच्छा अगेन मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फेस वॉश तो पता ही होना चाहिए, बट एक आध अच्छा एंटी एजिंग क्रीम अगेन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड, उनके अंडर गाइडेंस में लेकर ही मुझे लगता है सबको स्टार्ट करना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो मतलब हर बीमारी की तरह चर्म रोग के बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर के पास तब ना जाएं जब बहुत देर हो चुकी हो, पहले से ही एक डॉक्टर की सलाह लेते हुए आगे बढ़ें ताकि आपको पता हो कि आपको आपकी त्वचा का ध्यान किस तरह रखना है। सही,
0: बिल्कुल जी।
1: आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई एक एक्सपर्ट बनकर अपने सुझाव देता है।

0: है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक डॉक्टर के पास जाए और उनसे पूछे कि हमारे लिए क्या सही है। ऐसे में हम रोज नए नए केमिकल्स का नाम सुनते हैं, तो क्या इतने केमिकल्स चेहरे पर यूज करना, वो भी डॉक्टर की सलाह के बिना, ये सही है? कभी कभी हमें ये तक देखने मिला है कि 5 से 12 स्टेप्स का स्किन केयर रूटीन बताया जाता है और हर उम्र के लोग उसे कर भी रहे हैं।
1: पहली बात तो आपको इस प्रकार की जानकारी होना चाहिए कि कौन सही बता रहा है और कौन पेड प्रमोशंस कर रहा है या कोई डॉक्टर नहीं है। आज की तारीख में कोई इन्फ्लुएंसर से लेकर हर कोई स्किन के बारे में, मैंने तो न्यूट्रिशनिस्ट इवन जिम इंस्ट्रक्टर्स तक ये बताते हैं कि स्किन का रूटीन क्या होना चाहिए। तो आपको इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए कि ये एक्चुअली में स्किन के लिए एक्सपर्ट है, एज इन उसके पास कोई स्किन से रिलेटेड डिग्री है। और डिग्री का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ या मैं एक डिप्लोमा होल्डर हूँ। पहली बात, स्किन के डॉक्टर वही होते हैं जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास MD या DVL या DDVL की डिग्री होती है। अगर ये वही डॉक्टर हैं जिनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और आपको वो कुछ बात बता रहे हैं, तो मुझे लगता है 90% टाइम पे वो सही बता रहे होंगे। बट वही चीज़ अगर आपको कोई पार्लर की लेडी बता रही है जिसको स्किन के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है उसके पहले यूज़ करने के पहले एक बार आपको डॉक्टर की सलाह जरूर से लेनी चाहिए। कुछ भी 5 स्टेप स्किन केयर और 10 स्टेप स्किन केयर, मुझे लगता है पैसे का सिर्फ वेस्टेज है। सिर्फ एक भी चीज अगर आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो, मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन के अलावा, मुझे लगता है वो भी बहुत वंडर्स कर देती है, इंस्टेड कि आप इस प्रकार के इतने स्टेप स्किन केयर रेजिम करें। तो मुझे लगता है कि सलाह सिर्फ उनसे ले जिनको इसकी जानकारी हो।
0: पार्लर की आपने बात कही, अधिकतर महिलाएं ऐसी होती हैं जो कम से कम महीने में एक बार तो पार्लर जाती ही हैं। लेकिन आज भारत में कई तरीके के ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं। क्या आप अपने श्रोताओं को सुझाव देना चाहेंगी कि पार्लर चुनने से पहले इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखें, ताकि आप पार्लर से कोई भी इन्फेक्शन ना उठा ले आएं?
1: मैं पार्लर के बारे में ऐसे कुछ टिप्पणी नहीं दूंगी, बट मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो देखा है, मैंने देखा है कि जो लोग पेडिक्योर करवाते हैं पार्लर में या मैनिक्योर करवाते हैं, मैंने वार्ड्स बहुत देखे हैं अच्छे से अच्छे पार्लर में। मैंने देखा है कि वो लोग वही टब यूज करते हैं जिसमें दूसरे लोग वायरल इन्फेक्शन के साथ आते हैं। और मैंने बहुत सारे मेल पेशेंट्स जो कि मेल सैलॉन जाते हैं, मैंने दाढ़ियों पे वार्ड्स बहुत देखे हैं, बिकॉज वो लोग शेविंग कराते हैं, तो जो उस्तरा होता है वो शायद कॉमन होता है। और मतलब ऐसे छोटे मोटे नहीं, मैंने बड़े बड़े पार्लर के लोगों को, सैलॉन्स के लोगों को देखा है। तो मुझे लगता है एक कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे क्लीनलीनेस रखी जा रही है, और जो ऐसी दवाइयाँ और पार्लर वाले अगर आपको दे रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बोलें कि इससे आप बिल्कुल गोरे हो जाओगे और सुंदर हो जाओगे, है ना, तो वो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी नहीं होती है। उसके अंदर वो बहुत हार्ड केमिकल्स डाल रहे हैं जिसमें से स्टेरॉइड सबसे ज़्यादा है ना, तो उसकी वजह से मैंने किडनी फेलियर और मैंने डेथ्स भी देखी हैं। आपकी पार्लर वाली ने आपको एक क्रीम दी गोरा होने के लिए, और आप समझे उससे आपकी मृत्यु हो रही है, कैसा लगेगा? तो मुझे लगता है इस प्रकार की अनवेरीफाइड चीज़ें, कुछ भी जो बिना लेबल के आती हैं, बिना FDA अप्रूव्ड आती हैं, नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत गड़बड़ होते हुए देखा है बहुत सारे मरीजों के साथ। तो मुझे लगता है कुछ भी आप करो, एक वेरीफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर ही करो, और पार्लर वालों से आप बस एक थोड़ा देखें कि उनका वैक्स कराने जा रहे हैं तो आप देखें कि वहाँ पे कितनी साफ सफाई है, वो किस प्रकार से कर रहे हैं, कितना क्लीन है, और मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है अदरवाइज।
0: बिल्कुल। कोई और सुझाव आप आकाशवाणी के श्रोताओं को अपनी तरफ से देना चाहेंगी?
1: अल्टीमेटली जो आप खाते हैं वही आपके चेहरे पे और बालों पे और बाकी की बॉडी पे दिखता है। तो मुझे लगता है खान पान अभी बहुत अच्छा रखें, भीगे हुए बादाम, कम से कम 5 से 10 बादाम रात में भिगाकर आप सुबह खाएं, अखरोट वॉलनट्स 3 से 4 वो भी भिगाएं अगले दिन खाएं, सीड्स जो कि मार्केट में आते हैं, पम्पकिन सीड्स और वाटरमेलन सीड्स या चिया सीड वाटर रात में भिगा के अगले दिन सुबह पिएं, तो मुझे लगता है स्किन और हेयर के लिए काफी फायदेमंद होता है वो।
0: त्योहारों का मौसम आने वाला है, तो एक के बाद एक त्योहार आएंगे, और हम हर त्योहार में अच्छा दिखना चाहते हैं, तो हम चेहरे पर मेकअप तो ज़रूर लगाएंगे, बालों में भी हम या तो स्ट्रेटनिंग करेंगे या हम हेयर सेटिंग स्प्रे लगाएंगे। तो ऐसे में क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए कि हमारे बालों को और त्वचा को नुकसान ना हो?
1: देखिए, आपके अगर बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं और आप बहुत ज़्यादा अगर मेकअप लगा रहे हो अपने चेहरे के ऊपर, और आप मतलब मुझे लगता है 2-3 घंटे से ज़्यादा मेकअप चेहरे पर नहीं होना चाहिए, बट अक्सर हम आते हैं रात में और हम इतने थक चुके होते हैं कि हमारे पास इतना समय भी नहीं होता हम अपना मुँह धोएं। मुझे लगता है अगर आप ढंग से मेकअप को पहले तो पूरी तरह से निकाले रात में, अच्छे से उसको मॉइस्चराइज करें, अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं और फिर सोएं, है ना। तो मेकअप मुझे लगता है कि सभी लगाते हैं, किस लड़की को पसंद नहीं है मेकअप लगाना आज की तारीख में। मेकअप लगाएं बट उसको प्रॉपरली निकालें, और बालों में भी अगर स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे मार्केट में अवेलेबल हैं जो बेसिकली सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, तो आप मुझे लगता है पहले उसको लगाएं फिर स्ट्रेटनिंग करें। बट तब भी मैं ये बोलूंगी कि बहुत

0: हीट नहीं लगानी चाहिए, किसी भी प्रकार की हीट, ना ब्लो ड्रायर ना स्ट्रेटनर के थ्रू. वंस इन अ वाइल महीने में एक आध बार मुझे लगता है कि कर लें तो ठीक है, बट आप सोचिए मैं रोज स्ट्रेटनर लगाऊंगी तो अल्टीमेटली हीट किसी भी प्रकार की बालों को डैमेज ही करेगी. महीने में एक आध बार के लिए तो मैं भी मना नहीं करूंगी, बट आप थोड़ा सा हीट प्रोटेक्शन स्प्रे या सिलिकॉन बेस्ड जेल्स जो आते हैं उसको लगाएं, फिर बालों की स्ट्रेटनिंग या ब्लो ड्राई कराएं.
1: बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके. उम्मीद करते हैं कि आपके ये सभी सुझाव हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं के काम आएंगे. धन्यवाद.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे त्वचा और बालों की देखभाल विषय पर भेंटवार्ता. आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर अपने पत्रों के माध्यम से. और अब सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत.

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। श्रोताओं, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल थेरेप्यूटिक्स की। श्रोताओं, ये एक ऐसी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित डिजिटल तकनीक है जो मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ बीमारियों के उपचार, प्रबंधन और रोकथाम में मदद करती है, यानी मरीज के इलाज में भी सक्रिय भूमिका निभाती है। श्रोताओं, ये तकनीक मधुमेह, अनिद्रा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओबेसिटी जैसी बीमारियों में दैनिक मार्गदर्शन देती है। ये व्यायाम, दवा खाने की याद दिलाना, बीमारी कितनी ठीक हो रही है जैसी कई सुविधाएं प्रदान करती हैं। श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह से हम इस तकनीक का उपयोग करें और इस ऐप में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और अपना लक्ष्य दर्ज करें। नियमित रूप से मिलने वाले निर्देशों का पालन करें, समय समय पर अपनी रिपोर्ट देखें और आवश्यकता होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। श्रोताओं, डिजिटल थेरेप्यूटिक्स का उद्देश्य डॉक्टर की जगह लेना नहीं, बल्कि डॉक्टर द्वारा दिए गए उपचार को अधिक प्रभावी बनाना है, क्योंकि जब तकनीक और सही इलाज साथ चलते हैं तो सफ़र भी खूबसूरत हो जाता है।

श्रोताओं, रोज की डाइट में अगर हम मखाने को शामिल करते हैं तो शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। मखाना एक बेहतरीन सुपर फूड है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर पाया जाता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ पेट, दिल और त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें कैलोरी अपेक्षाकृत कम और फाइबर ज़्यादा होते हैं, जिससे पेट दर्द तक देर तक भरा रहता है। सुबह या शाम को 25 से 30 ग्राम मखाना कम घी या तेल में सेक कर खाना सेहत के लिए बेहतर होता है। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आप सब से विदा लेने का। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए नेहा जैन को। नमस्कार।

0: स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 1:30 हुए हैं। ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ध्रुवाराम मरकाम और साथियों के गाए हुए कुछ छत्तीसगढ़ी लोकगीत। आइए सुनते हैं।

0: ध्रुव राम मरकाम और साथियों को इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में।
1: अरे

0: सती चोला रे छतियाला बाण मारे तारी सती चोला।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम के आखिर में एक बार पुनः सुनिए ध्रुवाराम मरकाम और साथियों की आवाज़ में ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत, ये है बारिश गीत।

और इसी लोकगीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आपने सुने ध्रुवाराम मरकाम और साथियों के गाए हुए छत्तीसगढ़ी लोकगीत। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:45 हो चुके हैं। ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं चंद्रशेखर चक्रवर्ती के गाए हुए कुछ भजन। कार्यक्रम का आरंभ मीरा की इस रचना से।

0: इसी भक्ति रचना के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आपने सुने चंद्रशेखर चक्रवर्ती के गाए हुए कुछ भजन। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
7: पानी की हर बूंद है अनमोल,
8: बहने ना दें इसे बेमोल।
7: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
8: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दे हरियाली का गहना।
9: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही।

0: धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
2: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

द डिप्लोमेट फिल्म का ये गीत आप सुनने जा रहे हैं वरुण जैन, रोमी और अनुराग की आवाज़ों में। कौसर मुनीर ने इसे शब्द दिए हैं और धुन तैयार की है अनुराग।

0: और इसी गीत के साथ में फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज खंडवा के नए कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसानों के खातों में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। राष्ट्र उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन कर रहा है। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर कलाम ने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन और विचार सदैव देश के युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। प्रदेश के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के 68 शासकीय महाविद्यालयों में AI और फिनटेक विथ AI के निशुल्क सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। IIT दिल्ली के सहयोग से संचालित इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में 2000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में समीक्षा बैठक के दौरान रीवा के श्रीराम निजन संस्कृत परिसर में नए शैक्षणिक सत्र से सभी प्रस्तावित पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पदों के सृजन तथा समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही परिसर को संस्कृत, वैदिक अध्ययन और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख शिक्षा एवं शोध केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया। प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत प्रदेश भर में हल्की से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। इस मानसून सीजन में अब तक औसत से करीब 15% कम बारिश दर्ज की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों के 65 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतने पर राजा मुथुपांडी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि राजा मुथुपांडी की सफलता से हर भारतीय गौरवान्वित है और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने के उद्देश्य से कृषि उपज मंडी परिसर में साप्ताहिक जैविक हाट का आयोजन किया गया। शिवपुरी के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में रिक्त सीटों पर संस्था स्तरीय काउंसलिंग के तहत प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इच्छुक छात्र छात्राएं MP ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराकर आगामी 12 अगस्त तक कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और

इलेक्ट्रिकल जैसी शाखाओं के प्रथम वर्ष में सीधा प्रवेश ले सकते हैं और भोपाल स्थित मानस भवन में तुलसी मानस प्रतिष्ठान द्वारा 1 से 5 अगस्त तक 5 दिवसीय तुलसी जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
3: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
3: मैं कुछ दिनों से मान्य सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे मान्य सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

0: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
1: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों। प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
0: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
3: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716, जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
4: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक

0: प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उभर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
1: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का अनूठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के होंगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
3: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा

0: का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के सभी सुनने वालों को शिवम का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं, रफ़ी साहब का गाया हुआ। इस नगमे को सुनने के लिए हमारे जिन दोस्तों ने अपनी फरमाइश लिख भेजी है, उन सभी के नाम इस गीत के बाद